0: कि जो जो कौतक तुसी श्री गोविंदवाल साहब की धरती ते वेख के आए हो ओ मैनू सुनाउणा कर। फिर जेड़े इहदे अहलकार हन ओ दसदे ने कि धन गुरु नानक देव जीआं दे घर अंदर बादशाह अकबर वड्डी करामात वरत रही है। उत्थे कोई ऊच नीच दा भेद भाव नहीं, पंगत दे विच भोजन है, संगत दे विच भजन इक्को जिहा वरताया जांदा है।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.
0: Hor ki pragat hoya sari katha sunao. Akhan lagge Maharaj ne utthe apne gursikhan layi Sri Govindwal Sahib de andar Mukti Sarovar Bauli Sahib lavauna kita hai. तमाम दुनिया दे लोक 68 तीर्थां दा रटन कर दे गंगा दा इशनान गोदावरी सरस्वती दा इशनान करके अपने आप नूं पवित्र जानदे ने। सच्चे सतगुरां ने उत्थे बौली साहिब खणवाउणा कीती है जिस दियां 84 पौड़ियां बना करके पातशाह ने मर्यादा कायम कर दित्ती है कि 84 वार इशनान 84 वार जप जी साहिब दे पाठ पूर्ण मर्यादा अनुसार होवण। गुरु का सिख अपना जीवन गुरु आशे अनुसार हुक्मा अनुसार मर्यादा अनुसार बतीत करे। परमेश्वर दे पाणे नूं मिठा करके मन्ने नेमी प्रेमी होवे ते 84 लख जूना दा गेड़ कटिया जावेगा। महाराज जीआं ने जिस वेले बौली साहिब दी सेवा करवाई है ते बड़ा करड़ा थां आया सी जिस कारण महाराज जीआं ने भाई मानक चंद नूं हुक्म लाया सी कि भाई मानक चंद जी तुसी ए सेवा दी समाप्ति करो, तुसी ए करड़े थां नूं तोड़ो। फिर जिस वेले उसने जा करके एक भारी शास्त्र दे नाल भारी एक कुहाड़े दे नाल मानो हथौड़े दे नाल थां नूं पुटना कीता है ते इक्के दाम ही कागज दे वांगरां धरती पाटी है बौली साहिब दे अंदर जल भर आया है। मानो किसी दरिया दा जिवें कोई किनारा टुट गया होवे ते सारे गुरसिख बड़े खुश होए। मानक चंद अंदर ही रह गया सी ते तीसरे दिन उसदी मां ने आके बेनती कीती सी, धन गुरु अमरदास मेरा पुत्र तुसी बौली साहिब दे अंदर उतारिया सी, बाहर नहीं आया, ओ डुब गया है, मेरे बढ़ेपे दा सहारा सी, जां ते मेरा पुत्र दे देव जां फिर मैनू मेरे पुत्र दे कोल ही भेज देवो, बडेपे अंदर पुत्रां बिना कादा गुजारा है, जीवन रुल जांदा है बजुर्गां दा। धन गुरु अमरदास जी आखण लगे माता जी फिक्र ना करो, साडे बचन हन के इत्थे ते कोई पशु पंछी चढ़ाई नहीं करदा साडे हुक्मां अनुसार। फिर तेरा पुत्र ते फिर गुरु नानक दे घर दी सेवा करदा सी, पातशाह ने बौली साहिब दे कोल जाके बचन कीते, मानक चंद जिन्हां दा नाम मानक हुंदा है ओ किसे नूं दुख नहीं दिंदे, सुख ही सुख वरतांदे ने, ते तू अपनी माता नूं दुखी कर रहा है, बाहर आ जा। पर पातशाह दे हुक्मां अनुसार तीसरे दिन ओ बाहर आया। महाराज जीआं ने चरण छुआ करके संगत जी मृतक पायो तन सासा, मरे नूं मानो जिउंदा कर दिता, ऐसे कौतक उथे वेखे बादशाह अकबर। उथे तमाम दुनिया आ करके महाराज नू नमस्कारा कर दी है। जिस वेले संगत जी पर बादशाह अकबर दे अहलकारा ने सारी कथा सुनाई है, बादशाह अकबर सुन करके बड़ा खुश होया। आखन लगा भी हुण जदों आपां लाहौर नू जावांगे ना, रस्ते विच दस्यो पातशाह दा दरबार किथे क आउंदा है, पर मैं महाराज जीआं दा शुकराना करन लई जावांगा। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਓ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਨ ਚਿਤ ਬਿਰਤੀਆਂ

ने आज्ञा दित्ती कि राजा बैठ जा, जिथे गुरु की संगत बैठी है ना उथे बैठ जा। अजोके समय दे अंदर ते संगत जी पातशाह दे धर्म मर्यादा नू भंग कर दिता जांदा है। वखरे संगत जी उन्हां नू माण सन्मान दिते जांदे, कोई राज दरबार चो लीडर आ जावे। पर धन गुरु अमरदास महाराज जी आखदे, बादशाह अकबर तू आया है, जी आया नू कहने हां। जिथे संगत बैठी है, संगत

0: आनंद दे नाल संगतां वसणगियां, सत संगत करनगियां, सिखी दा प्रचार प्रसार होवेगा।
1: लावर सो मिल हरख है शाहू,
0: आप जिया दे महाराज दर्शन करके बादशाह अकबर बड़ा प्रसन्न होया, भेटा प्रवान कर लवो।

0: गुरु का खालसा मैदाने जंग दे विच डटिया होया सरदार फतेह सिंह ने गाजिया उत्ते हल्ला बोलिया कहिंदे ने कि इन्हां जबरदस्त जिन्हां दुष्टां ने साहिबजादिया उत्ते जुल्म कीता है जिन्हां दे हत्थों प्रजा दुखी है उस राज दियां आपां जड़ां पुट सुटनियां ने। कहिंदे गुरु का खालसा डटिया ऐन युद्ध मगिया होया मौके ते दगा दे गया सुच्चा नंद दा भतीजा गंडा मल लुटेरे पहला हरन हो चुके ने धारवी डाकू जेड़े ने और दौड़ी दौड़ के जा चुके ने मैदान विचों लेकिन 1000 सिपाही लेके जेड़ा सुच्चा नंद दा भतीजा बेईमानी धोखे दे इरादे नाल आया सी कि दा लगे बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं आपां धोखे नाल मौत दे घाट उतार देना उहदा दा नहीं लगा। मैदाने जंग विचों गंडा मल अपनी फौज लेके दौड़ गया जिस पासे चो निकलिया पासा कमजोर होया बाबा बंदा सिंह बहादुर दी अपनी फौज रिजर्व है दसिया जाके कि गंडा मल दगा दे गया है। बाबा बंदा सिंह बहादुर फिर आप मैदान विच किवें आउंदा है किवें चप्पड़ चिड़ी दा मैदान जितिया जांदा किवें सरहिंद दे नाज़म नूं मैदाने जंग अंदर सुट के वैड़कियां दे मगर पा के 12 को सरहिंद खड़िया जांदा किवें इन्हां पापियां नूं इन्हां दे कीते गुनाहां दी सजा दे के खालसाई राज कायम कीता जांदा है आपां कल दे दीवाना विच सरवण करांगे। धन्नवाद है गुरु की संगत दा कोटान-कोट शुक्र है दीन दुनिया दे वाली गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज दीयां दा बेअंत सन्मान माया रूप अंदर गुरु की संगत वलों कीता जा रहा है। सतगुरु जी किरत कमाईयां सफलियां करन खजाने भंडारे भरपूर करन नाम दान गुरसिखी जीवन चढ़दी कला दीयां दातां बख्शिश करन। हुण गुरबाणी पाठ बोध समागम परोपकार है गुरमुख प्यारियां दा सत्कारयोग ज्ञानी लखबीर सिंह जी हैड ग्रंथी गुरु नानक सिख गुरुद्वारा डेल्टा उन्हां दे नाल सिख पंथ दे सत्कारत गुणी जन विद्वान ज्ञानी जैमल सिंह साहिब जी दमदमी टकसाल वाले ओ ज्ञानी गुरविंदर सिंह जी इत्यादिक गुरमुख प्यारे गुरबाणी दे गुजे भेद लगा मात्रा साडे समझण विच गल भावे छोटी लगे पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे वक्त दी साखी साडे सामने है। जदों एक गुरु का प्यारा बाणी पढ़दा होया गा रहा सी करते की मित करता जाने कै दी जगह उत्ते के शब्द वरतदा सी दो चार वार समझाया गया दसो लेकिन पक चुका सी जबान उत्ते शब्द जदों ना टलिया पातशाह कहिंदे जाके इहदे चपेड़ा मारो इहदे आके शिकायत करदा कहिंदा पातशाह मैं बाणी पढ़दा तुहाडे सिखा मैनूं कुट्टिया बाणी पढ़दे नूं पातशाह कहिंदे भी तेरे ते अज वज्जियां तूं ते साडे रोज ही मारदा गुरबाणी गलत पढ़ के गुरबाणी दी संथिया बहुत जरूरी है साडे वास्ते सो ए उपराला बहुत वधिया ते बहुत वड्डा है जो गुरमुख प्यारिया वालों कीता जा रहा है इस दा भी लाहा प्राप्त करिए। अगला समा ज्ञानी गुरप्रीत सिंह जी गुरु घर दे सत्कारत ग्रंथी साहिबान आप गुरु की संगत दे नाल सांझा करनगे। खंडे बाटे दा अमृत छको गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लड़ लग जीवन सफला बनाओ आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा
1: वाहेगुरु जी की फतेह।
2: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ

0: करना साध संगत जी खुले पाठ थोड़ा जा भारा करना लल्ले दे थले हलंत है पाठ नहीं कहना इथे भनत नानक भरम पट खुले गुर प्रसादी जानिया
1: साची लिव लागी है पीतर सतगुर सियो मन मानिया तनासरी
2: साध संगत जी ओ धन धन सतगुरु श्री गुरु रामदास जी का उचारण किया होया शब्द जदों गोइंदवाल साहिब विखे तीसरे पातशाह सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी का ज्योति जोत समाउण दा दिहाड़ा मना रहे सन उस समय बहुत ज्यादे संत महात्मा गुरु के सिख एकत्र सन। सतगुरु जी ने बड़े प्यार दे सहित ए पावन पवित्र शब्द उचारण किया। आओ जी सरवण करिए चौथे पातशाह जी का उचारण किया होया।

जन नानक संगत साध हर मेलह हम साध जना पाग राली तनासरी महला चौथा हर हर बूंद भये हर स्वामी हम चात्रिक।

ने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरपूरै प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम कास्ट लोस्ट हर संग हरी।

0: हर दरगह पावह फिर जन्म ना आवह हर हर हर जोत समाई जाप मन नाम हरि हो सर्ब सुखी हर जस ऊच सब नाते ऊपर हर हर हर सेव छुडाई रहाओ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.

0: 84 सिद्ध बुद्ध ते 30 कोट मुन जन सब चाह हर जीव तेरो नाव।
1: 84 सिद्ध बुद्ध इथे जा के रुकना साध संगत जी, 84 कह के रुक नहीं जाना, 84 सिद्ध बुद्ध ते 30 कोट मोन जन। मोन जन पाठ भी संबंधक रूप दे विच करना ते जन पद ते आन के विश्राम लाउणा, राह च विश्राम वाधू नहीं लाउणा क्योंकि ये साध संगत दी फिर अर्थ बदलणगे। सो 84 सिद्ध बुद्ध ते 30 कोट मोन जन सब चाह है हर जियो तेरो नाव।
0: गुर प्रसाद को विरला पावै जिनका लिलाट लिखिया तुर पा
1: पाव। सच्चे पातशाह महाराज स्पष्ट रूप दे विच कहिंदे लोग देवी देवत्यां दी पूजा करदे हन, सिद्धां दी पूजा भी कीती जांदी है। गरीब नवाज कहिंदे 84 दे 84 ही सिद्ध ते 33 करोड़ देवी देवते ते मुनि जन जिन्ने भी हन सारे दे सारे महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु जी सब चाह है हर जियो तेरो नाओ, सारे वाहिगुरु तेरे नाम नूं तरसदे हन। सो साध संगत जी सानू गुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने कृपा करके नाम दी बख्शिश कीती है, असी वड्डे भागां वाले हां। सो साध संगत जी जिन्हां दी असी पूजा करदे हां ओह उस चीज नूं तरले लै रहे जिहड़ी सानू प्राप्त हो गई है। सो सच्चे पातशाह महाराज सानू वधिया वड्डी बख्शिश करदे हन। गुर प्रसाद को विरला पावै जैन कौ लिलाट लेख तुर पाओ। महाराज कहिंदे गुरु दी कृपा दे नाल कोई विरले जाने नूं ऐसी नाम दी प्राप्ति अंतरीव अंदरों हिरदे चों जड़ी नाम दी बख्शिश हो जांदी है, जिहदे मत्थे ते लिलाट ते लिखिया हुंदा उह देवी देवतियां नालों ही वड्डा, उह सारिआं नालों उच्चा। सुसाध संगत जी किसे भी देवी देवते दी पूजा दी प्रथाए वाहिगुरु कोलों नाम मंगीए। महाराज सच्चे पातशाह जीआं दी पावन बाणी दे विच साध संगत जी इह बचन आउंदे हन, इस देही कौ सिमरह देव। यह मनुखा देही नूं तरले लैंदे फिरदे ने देवते, सानू वाहिगुरु दी आराधना ही केवल करन दी जरूरत है।

0: पलत मुख उजल होई है, नेत त्याई हार पुरख निरंजना रहाओ। जह हर सिमरन भया तह उपाद गात कीनी, वडभागी हार जपना जान नानक काओ गुर एह मात दीनी। जाप हार पवजल तरना
1: जान नानक कौ इथे जमक लाउणी, गुर पाठ ते थोड़ा जा ठहरा ला के एह मत दीनी इथे विश्राम लाउणा। जाप हार पवजल तरना।
0: तनासरी महला चौथा, मेरे साहा मैं हर

0: साध संगत दी शब्द दे विच तना सिरी आया, इथे भी इसे तरह उच्चारण करना। हांजी,
1: तना सिरी महला पंजवा, आबहर राखन हार चितारिया, पतित पुनीत किए खिन भीतर, सगला रोग बिदारिया रहाओ। गोष्ट भई साध कै संगम, काम क्रोध लोभ मारिया, सिमर सिमर पूर्ण नारायण, संगी सगले तारिया। औखद मंत्र मूल मन एकै, मन विश्वास प्रभ धारिया, चरण रेन बांछे नित नानक, पुनः पुनः बलिहारिया।
0: पुनः पुनः पाठ उचारण पोले ही करने, पुन्ने पुन्ने नहीं कहना, कई पुन्ने पुन्ने कर जांदे आ। जदों पुन्ने पुन्ने कहांगे ते पुन्न दा अर्थ साध संगत जी पुन हुंदा, ते पुनः दा अर्थ हुंदा दुबारा दुबारा, फिर फिर। सो इस करके पोला उचारण करना, पुनः पुनः बलिहारिया।
1: तनासरी महला पंजवा, मेरा लागो राम स्यो हेत, सतगुर मेरा सदा सहाई, जिन दुख का काटिया केत रहाओ। हाथ दे राख्यो अपना कर, बिरथा सगल मिटाई, निंदक के मुख काले कीने, जन का आप सहाई। साचा साहेब हुआ रखवाला, राख लिए कंठ लाए, निर्भओ भये सदा सुख माणे,

भी डर नहीं धारण करना चाहिदा। सो कत डरै जे खसम संभारै, जिन्हें परमात्मा नूं अपने हिरदे दे विच याद रखिया वह डर दूर कर देंदा है।

0: सगल है फीके, एक है गोबिंद को नाम नीको, कहत है साध जन तन तहन अपन थाप्यो, हार जाप ना निमख जाप्यो, अर्थ द्राब देख काछ संग ना ही चलना।
1: साध संग जी चंदन चोआ रास इथे जमक ला के भोग करत अनेकै, इथे विश्राम बिखिया बेकार देख, इथे जमक सगल है फीके, इथे दूजा विश्राम एक है गोबिंद को नाम नीको, इथे फिर ठमक कहत है साध जन है, ते फिर रुकना लमेरी पंक्ति है। तो विश्राम दो हन, दो जमका एक ठमक, तो इस तरह उचारण करना, दो दोहरे आप संघ दे चरणा च बेनती है। फिर ध्यान दिता जावे चंदन चोआ रास इथे जमक, भोग करत अनेकै इथे विश्राम, बिखिया बेकार देख इथे जमक, सगल है फीके इथे दूजा विश्राम, फिर एक है ते थोड़ा जा ठहरा ला के एक है गोबिंद को नाम नीको, इथे फिर ठमक कहत है, इथे ठहरा थोड़ा जा ला के साध जन।
0: जा को रे करम भला तिन ओट गही संत पल्ला,
1: पल्ला पाठ कस के करना ते भला पाठ पुला, जा को रे करम भला तिन ओट गही संत पल्ला।

सन्मानयोग उपस्थित गुरु रूप सत्संग जीओ गुरबाणी विचार आप जी के समक्ष पेश करा। पेशतर गुरमत मर्यादा अनुसार फतेह कबूल करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे जाप साहब दे आए एक छंद तो गुरबाणी विचार तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी दे सामने रखण दी एक निमाणी जी कोशिश कर रहे हैं। छंद है, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। निधान है, तू गुणा दा खजाना है, तू शक्ति दा निधान है, तू सुहप्पन दा खजाना है। लेकिन अमान है, तेनू मान नहीं है, ना अपनी शक्ति दा, ना अपने स्वप्न दा, ना अपने गुणा दा। तेनू किसी भी गुण दा मान नहीं, तेनू अपनी समर्था ते शक्ति दा कोई मान नहीं, तेनू अपने स्वप्न दा, सुंदरता दा कोई मान नहीं। प्राचीन उपनिषदां दे ऋषियां ने परमात्मा दे ए तीन गुण मने ने, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत है, शिवम वो प्रकाशमान है, और वो अति सुंदर है। उसनु वैदिक ऋषियां ने जो बयान किया, सत चित आनंद। वो सत है, चित वो चेतन है, वो आनंद स्वरूप है। उसनु धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इंज बयान किया, सत सुहाण सदा मन चाव। तू सत है, सुहाण तू अति सुंदर है, सदा मन चाव तू आनंद स्वरूप है, खिड़े आवे है। तेरे विच खेड़ा ही खेड़ा है, तेरे विच हुलास ही हुलास है, तेरे विच चाव ही चाव है, तू कदी मुरझांदा नहीं। ऐसा जो शक्ति दा सोमा है, ऐसा जो स्वप्न दा खजाना है, ऐसा जो गुणा दा मरकज है, केंद्र है, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने अमान है, तेनू कोई माण नहीं है। किसे भी गुण दा, अपनी शक्ति दा, अपने स्वप्न दा अमान है, निधान है। अगली गल, अनेक है फिर एक है। तू एक होंदा होया अनेक है, और तू अनेक होंदा होया एक है। ये तो पहली जापेगी, जो एक है वो एक ही हो सकता है, अनेक किस तरह होवेगा? और जो अनेक है वो अनेक हो सकता है, एक किस तरह होवेगा? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, अनेक है फिर एक है। तू अनेक होंदा होया एक है, तू एक होंदा होया अनेक है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा पहला अक्षर एक। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी एक तो आरंभ होंदी है। गुरु नानक दे कंठ तो जो पहला उद्घोष होया, गुरु नानक दे कंठ तो जिहड़ा पहला ब्रह्मनाद प्रगट होया, एक गणत दे ते हिंसा है, एक नहीं, गुरु नानक दे कंठ तो ये ब्रह्म वाक होके प्रगट होया है। गुरु नानक दे कंठ तो ये पहला उद्घोष है परमात्मा दे संबंध विच, एक। उस एक दा स्वरूप की है, उस एक दा स्वभाव की है, उसकी हस्ती की है, उसकी समर्था की है, सारी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी फिर उस एक दी व्याख्या। और फिर फैसला गुरबाणी का, पता है कि एक वस्तु बूझे ता होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। अगर उस एक नू समझ जाए ते तू पवित्र है, अगर तू उस एक नाल जुड़ जाए ते पवित्र है,
नहीं ते सदा ही नापाक गंदगी दी ढेर गलाजत नाल भरे आया मैला। महाराज शुद्धता मनते ही नहीं, एक नू समझे बिना कोई शुद्ध नहीं, एक नाल जुड़े बिना कोई पवित्र नहीं। कोई बहुत वड्डा दानी है, एक दी समझ नहीं, एक नाल जुड़िया नहीं, ये खुद भी अपवित्र, इहदे दान विच भी अपवित्रता होवेगी, इहदे दान विच भी हंकार दी बू होवेगी। कोई बहुत वड्डी सेवा कर रहा है, एक दी समझ नहीं, एक नाल जुड़िया नहीं, इस सेवा दे चवी हंकार ने जन्म लेना है, निरंकार ने नहीं। कोई जप कर रहा है, गुरुद्वारे आ रहा है, और तरह तरह की सेवा दे जुटे होया है, ना एक दी समझ, ना एक नाल जुड़े है। तो मैं अर्ज करा, इन्हां सारे धार्मिक कर्मां दे चों हंकार ही प्रगट होवेगा, निरंकार नहीं। और जिस जिस कर्म तो हंकार प्रगट होवे, उस कर्म नु निर्मल नहीं आख्या जा सकता, तो मलीन है, वो तो मैला है। जो खुद मैला है उदा दान भी मैला, जो खुद मैला है उदी सेवा भी मैली, और जो खुद मैला है यकीन जानो उसका गुरुद्वारे बैठना भी मैला है। क्योंकि जितने चिर तक खुद शुद्ध नहीं होवेगा, इसका कोई कर्म शुद्ध नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है, किवें शुद्ध होवेगा, किवें पाक होवेगा, किस तरह पवित्र होवेगा? तो फैसला धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का, एक वस्तु बूझे तो होवें पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। एकाग्रता बख्शने, एक नू समझे, एक नल जुड़े, एक नू जाने, ते तू पाक है, पवित्र है, शुद्ध है। जे एक नू तू समझिया नहीं, एक नू तू जानिया नहीं, एक नाल तू जुड़िया नहीं, तो बिन बूझे तू सदा ना पाक। मैं फिर अर्ज करा, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का पहला बोल, पहला अक्षर, पहला शब्द एक। दुनिया के वाहिद ग्रंथ धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने, जिन्हां दे बोल आरंभ होंदे ने एक तो, बाणी आरंभ होंदी है एक तो। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करदे ने, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। तू अनेक होंदा होया एक है, तू एक होंदा होया अनेक है। तवज्जा, ध्यान बख्शना, इति पहली हो गई। ओ अनेक भी है, ओ एक भी है, ओ एक भी है, ओ अनेक भी है। दरअसल संसार दे तल ते ओ अनेक है, और खुद ओ अपने आप दे निरंकार दे तल ते एक है। आकार दे तल ते अनेक है, निराकार दे तल ते एक है। ओ सरगुण दे तल ते अनेक है, ओ निर्गुण दे तल ते एक है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का फैसला, ये बाणी बिरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए इनू पढ़न वाले, सुनन वाले, गाण वाले बहुत आउणगे, पर सतगुरु का फैसला ये बाणी बिरलो विचार सी। ये कोई बिरला विचारेगा, और बिरला ही अपने सोच मंडल दे चले आवेगा। जद असी कहने फलाना मनुख बदल गया, तो की बदल गया? हाथ बदल गए, पैर बदल गए, मुंह मत्था बदल गया, कुछ भी नहीं बदलिया, विचार बदल गया, सोचनी बदल गई है, चितवनी बदल गई है। विचार दे बदलदिया मनुख का संसार बदल जाता है, सोचनी दे बदलदिया मनुख का आचरण बदल जाता है, चिंतन दे बदलदिया मनुख का सब कुछ बदल जाता है, सारे का सारा व्यवहार बदल जाता है विचार दे बदलदे हैं। और किधरे बहुगिणती दे मनुखां दे विचार बदल जान, इसे नूं कहिंदे ने युग बदल गया, समा बदल गया, युग बदल गया। युग दी तब्दीली मनुख दे विचारां दी तब्दीली है, और मनुख दे विचारां दी तब्दीली युग दी तब्दीली है। बहुगिणती दे मनुखी विचार बदल जान, तो सारे का सारा आचार बदल जाता है, युग बदल जाता है।
और जे व्यक्तिगत रूप विच किसी एक मनुख के विचार बदल गए ने तो उसकी दुनिया बदल गई, उसका व्यवहार बदल गया, उसका आचार बदल गया, उसकी तर्ज जिंदगी बदल गई। सब कुछ ते विचार है। इस रूहे जमीन दे इको एक कौम है सिख, जो विचार नु मत्था टेकदी है। विचार दे खजाने, विचार दे मरकज, विचार दे केंद्र धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नु मत्था टेकदी है। इस वास्ते सिख अविचारी नहीं चाहिदा, सिख अज्ञानी नहीं चाहिदा। इहदा ते गुरु ही ज्ञान है। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लगाओ। जिसका गुरु ज्ञान होवे तो वह आप अज्ञानी होवे। जो विचार दे खजाने दे अगो मत्था टेकदा होवे ते खुद कोई विचार ना होवन तो शायद मत्था टेकना भी पखंड हो जाएगा। वाकई कई दा मत्था टेकना भी पखंड है। शीश निवाइए क्या थिए जां हृदय कुसुदे, कि तेरा मत्था टेकना की मैंने रखदा है। जिस दे अगो तू झुक रहे हैं ना तेनू समझ, ना तेनू बोध, ना तेरी श्रद्धा, ना तेरा भरोसा। शीश निवाइए क्या थिए जां हृदय कुसुदे जाए। हो सकता है कि तेरे दान देश भी पखंड होवे, तेरे मत्था टेकन देश भी दुबाजरा काम होवे। दरअसल विचार बदले बिना मनुख की तर्ज जिंदगी नहीं बदलती। इत्थे सब तो वड्डी भेटा केड़ी रखनी है गुरु दे अगों? धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना चांदी अर्पण करना, ये पूरने पाने ने। जैसे पहले पहले मासूम बच्चे नो लिखना सिखाया जाता है तो उस्ताद पहले पूरने पाता है। ये पूरने ने धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना अर्पण करना, चांदी अर्पण करना, ये सब कुछ इस वास्ते है ताकि एक दिन मनुख नो अपने विचार अर्पण करने की जांच आ जाए, अपना मन अर्पण करने की जांच आ जाए। मनुख का मन की है, विचारां दी मूर्ति होर की है, ए भेट करने की जांच आ जाए। और जिस दिन ए अपने विचार भेट करता है, गुरु अपने विचार इसनू दे देंदा है। मनुख दे विचारां दे च लोभ है, गुरु दे विचारां दे संतोख है। मनुख दे विचारां दे च काम है, गुरु दे विचारां दे च राम है। मनुख दे विचारां दे च हंकार है, गुरु दे विचारां दे च निरंकार है। मनुख दे विचारां दे च क्रोध है, गुरु दे विचारां दे च दया है। मनुख दे विचार दे च मोह है, गुरु दे विचार दे च प्रेम है। ए क्रोध भेट करे ते दया मिले, ए काम भेट करे ते राम मिले, ए हंकार भेट करे ते निरंकार मिले, निर्माणता मिले, विनम्रता मिले। तो मैं अर्ज करा अपने मन नू भेट करना की, अपने विचारां नू भेट करना। ते हुण मैं अर्ज करा मनुख दे विचारां विच है की, कदी बगौर मुताला कर लेना। जैसे किसे मनुख ते प्रश्न करिए तन की है, तो चार शब्दां च व्याख्या की जा सकती है। तन हड्डियां है, हड्डियां दे उत्ते चढ़िया होया मांस है, मांस दे उत्ते चढ़ी हुई मिंज है, और मिंज दे उत्ते चलदी हुई एक खलड़ी है, स्किन खलड़ी है। इस खलड़ी दे थल्ले मिंज है, मिंज दे थल्ले मांस है, मांस दे थल्ले हड्डियां है। आखिरी ना चारां दा मजमूआ ही तन है। और भगत कबीर कहंदे ने बिस्टा अस्त रकत परेटे चाम, वो इस ऊपर ले रखियो गुमान। है कि तेनू हड्डियां दा माण है, तेनू मांस दा माण है, तू मिंज ते हंकार कर रहे हैं, तू इस खलड़ी ते अपनी होमे प्रगटा रहे हैं। कदी बगौर मुताला करना, तन दा हंकार की है, खलड़ी दा हंकार। ते जैसे असी वक वक रंग दे कपड़े पाए ने, परमात्मा ने एक रंग दी खलड़ी किसे नू नहीं दिती, और खलड़ी ही कपड़ा है। कर्म ही आवे कपड़ा, नदरी मौख द्वार, कीते हुए कर्मां दे मुताबिक शरीर रूपी चोला सानू मिलदा है। पर इस चोले दा रंग, इस कपड़े दा रंग भी रब ने वक वक दे दिता। किसे नू गोरा, किसे नू काला, किसे नू सांवरा, किसे नू लाल, किसे नू जर्दी मायल, किसे नू गेहुआ रंग, एक रंग नहीं है। तुद वेखी जगत उपाया, परमात्मा दी पसंद भी यही है, एक रंग नहीं, अनेक रंग तेरे नारायणा, अनेक रंग, बेस्तर रंग। और सारे रंग चूंके उत्थों आए ने, इस वास्ते सारे रंगां विच नारायण है।
रंग सबे नारायण जेते मन भावन। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, तन की है, तन हड्डियां है, हड्डियां दते चढ़े होया मांस और मांस दते लिपटी हुई मिंज और मिंज दते चढ़ी हुई है खलड़ी। ते जे हुण कोई प्रश्न करे मन की है, तवज्जा, मन की है, वास्तविक मन की है, मन विचार है, मन सोचनी है, मन चितवनी है, मन आहंग है, ये चार शक्तियां दा मजमू है। जैसे तन चारां दा जोड़ है, हड्डियां मांस मिंज खलड़ी, इस तरह मन भी चारां दा मजमू है, विचार सोचनी चितवनी ते आहंग। इसनू कहिंदे ने मन बुद्ध चित आहंग, मन बुद्ध चित आहंग। इसनू शास्त्रकार चतुष्टा अंतःकरण भी कहिंदे ने, चतुष्टा अंतःकरण, चारां दा मजमूआ, चारां दा जोड़। जद अंदर विचारां दा प्रवाह चलदा है मन, जद मनुख सोचदा है कि किस विचार नू मैं अपनी जिंदगी दा अंग बनाना है ते किस विचार नू तलांजली देनी है, इस तरह जब सोचता है तो मन ही बुद्ध बन गया। बुद्ध जब मनुख किसे नू याद करता है या याद दिच बैठा है, चिंतन दिच बैठा है, वो ही मन बन गया चित्त, मन बुद्ध चित्त। एक चौथी शक्ति है आहंग, ये मेरे विचार ने, ये मैं सोच रहा, ये मैं याद कर रहा, ये आहंग भाव हर वक्त छाया रहता है। ये चारा का मजमूआ है साडा मन, मन बुद्ध चित आहंग, ये मन है। मन का बदलना की है, विचारा का बदल जाना, सोचनी का बदल जाना, याद का बदल जाना, हंकार का बदल जाना। तुसी आखोगे हंकार बदल जाता है, हाँ हाँ, एक निर्मल हंकार भी आता है। पहले मनुख तन का माण करता है, धन का माण करता है, जोबन का माण करता है, प्रभुता का माण करता है, परिवार से माण करता है, जात से माण करता है, कुल से माण करता है। लेकिन जब हंकार बदल जाता है तो ये रब से माण करता है, बाकी किसी से माण नहीं करता, गुरु से माण करता है। तान मान दीबाण साचा नानक की प्रभटे, हे प्रभु हे सच्चे, तू मेरा माण है, तू मेरा तान, मैनू हुण तेरे ते माण। तन ते माण है, धन ते माण है, जोबन ते माण है, प्रभता ते माण है, परिवार ते माण है, कुल ते माण है, जात ते माण है, इत महिला है, हंकारी है, यही लोगों को है। कोई जोबन का माण करता है, कोई प्रभता का माण करता है, कोई धन का माण करता है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का बड़ा सुंदर प्रमाण, जोबन धन प्रभता के मद में अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल होया फिरता है। धन का माण, जोबन का माण, प्रभता का माण। भगत भी मैरज करा निमाणे नहीं आते, माण तो रहत नहीं आते और निमाणे नहीं आते, बड़ा भारी माण आता उन्हां कोल। किस ते? उस परमात्मा दे, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल मैं आप जी दे सामने रखा। पातशाह कहिंदे ने माण मांगो, तान मांगो, धन लक्ष्मी सुत दे, हे प्रभु निमाणे होके नहीं जीवना, निताणे होके नहीं जीवना। कुदरती गल है, निताणा निमाणा होंदा है। जो निताणा है, जिहदे कोल तान नहीं, उहदे कोल माण कहदा, और जो निताणा है निमाणा है, वह तो मरण तो पहले मर गया, कबर दे चला गया, चलती फिरदी लाश है और कुछ भी नहीं। निताणी कौम निमाणी आउंदी है, निताणा मनुख निमाणा आउंदा है, निताणा देश निमाणा आउंदा है, और मरण तो पहले मर गया आउंदा है। निताणे लई जगत विच कोई जगह नहीं, कमजोर कहिंदे उस लई कोई थां नहीं, ते जद किसी तरह की भी कोई ताकत नहीं, ना धन का जोर, ना जोबन का जोर, ना कुल का जोर, ना जात का जोर, तो जोर किसका? जोर हुण प्रभु का। तान माण दीबाण साचा नानक की प्रभटे, हे प्रभु हुण तू मेरा तान है, इस वास्ते मैनू तेरे ते ही माण है।
परमात्मा निर्मल है उसका माण भी निर्मल है, बाकी हंकार मैला है। विचार जब बदलते ने तो हुण मैं अर्ज करा मनुख के विचारां विच है कि मनुख की सोचनी विच की है। अगर कह दईए विचारां दे बदलदिआं संसार बदलदा है, सोचनी दे बदलदिआं ही जिंदगी बदलदी है, चिंतन दे बदलदिआं यादां दे बदलदिआं ही सारी दुनिया बदलदी है, हंकार दे बदलदिआं ही सब कुछ बदलदा है। तो सवाल यह पैदा होंदा है मनुख दे विचारां विच की है, सोचनी विच की है, यादां विच की है। धार्मिक मनोचिंतक ऐसा कहिंदे ने कि मनुख दे विचारां विच मनुख दी सोचनी विच और मनुख दे चिंतन विच काम है, लोभ है, अहंकार है और की है, कुछ भी नहीं। पढ़ो अपने विचारां नूं अंदर किहड़े पै विचार चलदे ने, पढ़ो अपनी सोचनी नूं सोचनी विच की है और पढ़ो अपनियां यादां नूं यादां विच की है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने बड़ियां बड़ियां किताबां पढ़ लैंदा है अपने मन नूं नहीं पढ़दा। काया कागद मन परवाना सिर के लेख ना पढ़े इयाना। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेना है, बड़िया बड़िया किताबा पढ़ लेना है, बहुत कुछ पढ़ लेना है, पर मत्थे दे लेख नहीं पढ़ सकता, सिर दे लेख नहीं पढ़ता। तेरे सिर दे च की चल रहा है, तेरे दिमाग दे च की चल रहा है, तेरे मन दे च की चल रहा है, पढ़। और जिसनों अपना मन पढ़न की जाच आ जाए साधक, और जो अपने मन नो बदल देवे शुद्ध कर लेवे साधु, जो साधना दे लीन है मन नो समझण की कोशिश पिया करता है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ते इत्थे तक कहिंदी है गुरु अर्जन देव जी महाराज, ब्रह्मा बिशन नारद मुन सेखा तिन भी तन में मन नहीं पेखा। धार्मिक दुनिया दे ए अजीम देवते बड़े दार्शनिक सन, बड़े स्याणे सन, बड़िया शक्तियां दे मालक, पर जिस धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नु आप मत्था टेक रहे हो, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने ब्रह्मा बिशन नारद मुनि सेखा तिन भी तन में मन नहीं पेखा। वो भी मन दिया गहराइया नु समझ ना सके ते मन दे हथों ठगा गया, ब्रह्मा ठगा गया। किस तरह ठगा गया? अपनी बच्ची का रूप वेख के ही अपना मन मैला कर बैठा। पुराण कथावां जिसका अनुवाद करते ने भाई साहब भाई गुरुदास जी, चारे वेद वखाण दा चतरमुखी होए खरा सियाणा, लोकां नूं समझाएंदा वेख सुरस्ती रूप लुभाणा। ब्रह्मा जिहड़ी भुल ब्रह्मा करदा है उही भुल विष्णु करदा है, उही भुल शंकर करदा है, उही भुल इंद्र करदा है, उही भुल नारद करदा है। कारण क्यों करदा है? मन दियां गहराइयां नूं समझण दे असमर्थ रह गए। ते मन नूं समझना किधरे बच्चियां दी खेड ना समझ लैणी। लोकी कहिंदे ना मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, बिल्कुल गलत कहिंदे ने, ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ इंज कहना चाहिए, गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। पहले किस तरह कर लैणगे, किवें कर लैणगे? जिन्हां नूं मन दी बिल्कुल समझ नहीं इंज कहिंदे ने मन नूं एकाग्र करके पाठ करो, बिल्कुल गलत कहिंदे ने। और वो कह रहे हैं जिन्हां नूं मन दी समझ नहीं, इंज कहना चाहिए है पाठ करो ताकि मन एकाग्र होवे। मन दी एकाग्रता ते फल है। जिहड़े कहिंदे मन नूं एकाग्र करके कीर्तन करो, मन नूं एकाग्र करके कीर्तन सुनो, बिल्कुल गलत कहिंदे ने। और मैं फिर अर्ज करा उही कह रहे हैं जिन्हां नूं मन दी बिल्कुल समझ नहीं, कोई बोध नहीं, उही कहिंदे ने मन नूं एकाग्र करके कीर्तन सुनो। नहीं, इंज कहना चाहिए कीर्तन सुनो ताकि मन एकाग्र होवे, पाठ करो ताकि मन एकाग्र होवे, गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, बच्चियां दी खेल। और गल स्पष्ट हो गई, मन दी समझ नहीं, मन दा कोई पता नहीं। आम साधारण मनुखां दा ते कहना की धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, ब्रह्मा बिशन नारद मुनि सेखा तिन भी तन में मन नहीं पेखा। आम बंदे मन दे हथों ठगाए जाते ने, ब्रह्मा भी ठगा गया, किसी होर ने नहीं ठगया, मन नहीं ठग लिया बिशनु नो, मन नहीं ठग लिया शिवजी नो, मन नहीं ठग लिया इंद्र नो,
जो आम साधारण मनुख भूल कर देने इंद्र भी कर बैठा है। और हैरानगी कि गौतम ऋषि दी नार अहल्या अपने विचार अपने जज्बात नु काबू ना पांदा होया एक संत दी पत्नी नु भ्रष्ट करदा है। इंद्र गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा फैसला गुरु ग्रंथ साहब जी इस इतिहास नु साडे सामने रखदे ने। गौतम नार अहल्या तिस देख इंद्र लुभाया सहस शरीर तहन भग हुआ तामन पछोताया। तो मैं करा मनुख दे विचारां विच की है मनुख दी सोचनी विच की है मनुख दे चिंतन विच यादां विच की है मनुख दे विचारां विच काम है मनुख दे विचारां विच लोभ है मनुख दे विचारां विच अहंकार है। मैं दोवां दा नां नहीं लिया क्रोध ते मोह। पता है क्यों? धार्मिक दार्शनिक कहिंदे ने ये जो तीन ने काम लोभ अहंकार इन्हां दी अपनी बुनियाद है। क्रोध ते मोह इन्हां तिन्हां दी छाया है। क्रोध ते मोह दी अपनी कोई बुनियाद नहीं है इसकी अपनी कोई होंद नहीं है ये उन्हां तिन्हां दी छाया है। काम दी छाया है मोह लोभ दी छाया है मोह हंकार दी छाया है मोह। हंकार दी छाया है क्रोध मोह दी छाया है क्रोध काम दी छाया है क्रोध। जिस तो लोभ दी पूर्ति हो जाए उसते मोह आ जाता है प्यारा लगता है चंगा लगता है जिड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा गुस्सा आउंदा। जिड़ा काम दी पूर्ति कर देवे उसते मोह आउंदा है प्यारा लगता है चंगा लगता है जिड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा। और जिड़ा हंकार नू पठे पा दे प्यारा लगता है चंगा लगता है जिड़ा कह देवे थोड़े जैसा कोई दानी नहीं थोड़े जैसा कोई ज्ञानी नहीं तुसी ना हो तो सेवा हो नहीं सकती तुसी ना हो तो गुरुद्वारे चल नहीं सकते। कुछ ते हंकारी ऐसे होंदे ने वो आप ही अपने मुंह च सब कुछ प्रगट करते ने कहते ज्ञानी जी असी ना होइए तो जलूस किवें निकलेगा असी ना होइए तो स्कूल के दरवाजे बंद हो जान असी ना ही तो गुरुद्वारे का काम चल ही नहीं सकता। मेरा एक ही जवाब होंदा तू मर के वेख सब कुछ आंदा रहेगा। इत केती गई देख बाजे बजाए वही एक रैसी जो साचा खुदा है। कल तू ये आखेगा जो मैं ना वहां ते सूरज किवें चढ़ेगा मैं ना वहां ते दरियावां दे वेग किस तरह चलन गए मैं ना वहां ते हवावां किस तरह चलन गया। पर इसनु कौन दसे तू नहीं भी आवेगा तो सब कुछ होंदा रहेगा। एवें तेरा हंकार फिजूल हंकार फोका हंकार। तो जिहड़ा हंकार नू पठे पा दे उसते मोह आउंदा है चंगा लगता है प्यारा लगता है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। जिहड़ा लोभ दी पूर्ति कर देवे प्यारा लगता है चंगा लगता है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। एकाग्रता बख्शनी तवज्जा जो काम दी पूर्ति कर देवे प्यारा लगता है उसते मोह आउंदा है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। इस वास्ते सियाणे धार्मिक चिंतक ऐसा कहिंदे ने क्रोध ते मोह दा अपना कोई वजूद नहीं है अपनी कोई बुनियाद नहीं है अपनी कोई होंद नहीं है ये उन्हां तिन्हां दी छाया है। मन नूं समझना है थोड़ा जिहा अंतरमुखी होना है ये भी मैं अर्ज करदे हां। और अंतरमुखी होए बिना कुछ समझ भी नहीं आएगी तो अंतरमुखी ओ ही हो सकेगा जो सुनदा है। तो सुनना ही तो कठिन है बहुत कठिन है बहुत ही कठिन है। मस्जिदा ने मंदिर ने गुरुद्वारे ने साधना का थोड़ा थोड़ा अंतर है मंजिल इको ही है टिकाणा इको है। साढ़े हिंदू वीर जाते ने मंदिरों के दर्शन करने लिए किसी देवते अवतार की मूर्ति दे सारी साधना अखां ते खड़ीए वेखण ते खड़ीए दर्शन ते खड़ीए दर्शन करने ने वेखना अखां दे सामने जो कुछ होएगा अखां वेख लैणगियां। सारी साधना दर्शना ते खड़ीए अज एक मंदिर दी कोठड़ी दे भगवान नू वेखीए फिर बाहर वेखीए फिर सारा संसार भगवान दा रूप दिखाई देवे साधना है वेखना है दर्शन करने ने। साडे मुसलमान भरा जांदे ने मस्जिद दे पढ़न लई नमाज
ساری سادنا پڑھن تے کھڑی ہے، قرآن دی تلاوت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، پڑھن تے کھڑی ہے، ویکھن نالوں تھوڑا جیا پڑھنا یہ واسطے اکاگرتا چاہی دی ہے، تھوڑی جی سکھ جاندے نے گردوارے سنن لئی گرو کا شبد، ساری سادنا کنا تے کھڑی ہے، سنن تے کھڑی ہے، ویکھن نالوں پڑھنا اوکھا ہے اور پڑھن نالوں سننا اوکھا ہے، کٹھن ہے، اس چکر چ نہ پینا کہ اسی اتنے سارے بیٹھے ہاں سارے سن رہے ہیں، کتا ہی نہیں دو چاراں تو زیادہ کوئی نہیں سن رہا، سب اپنے وچاراں نو سن رہے ہیں، سب اپنی سوچنی نو سن رہے ہیں، سب اپنی یاداں چ مہو اندر جو پرنے چل رہے ہیں سب انہاں نال جڑے ہیں، کٹھن ہے، اگر کوئی سنے تو صاحب کہنا نانک بھگتاں سدا وگار، سنیے دکھ پاپ کا ناس، سندیاں ہی دکھ ناس ہو جاندے، سندیاں ہی پاپ ناس ہو جاندے، سندیاں ہی گرو کا شبد اندر پرویش کرے گا، سندیاں ہی گرو دی وچار اندر پرویش کرے گی، اندروں ہنکار نکلے گا، اندروں دکھ نکلن گے، اندروں سنتاپ نکلن گے، سننا ہی تے اوکھا ہے، اور سن اوہی سکے گا جس دا پورا دھیان اکاگر ہوئے، ادھر بھٹکدا پیا ادھر بھٹکدا پیا ادھر ویکھ رہا ہے ادھر ویکھ رہا ہے، تو سپشٹ ہے کہ دا دھیان بھی بھٹک رہا ہے، انہیں کی سننا ہے، سنن لئی دھیان دی پوری اکاگرتا چاہی دی ہے، ایک منک اچھی اچھی بول رہا ہوں دا ہے دوسرا سن رہا ہوں دا ہے، تے سنن والا اچن چیت کہہ دیں دا مطرا اے گل پھر آنکھ میں نہیں سنی، تو کیوں نہیں سنی جد بولن والا اتنی اچھی اچھی بول رہا ہے، تو کہندا میرا دھیان کسے ہور پاسے چلا گیا، بنا دھیان دی اکاگرتا تو سننا کٹھن ہے، اور بنا سنیا گرو دے شبد دا اندر پرویش ہونا کٹھن ہے، اور شبد دے اندر دے پرویش ہوئے بنا دکھاں دا باہر نکلنا بھی کٹھن ہے، دکھ تاں ہی باہر نکلن گے، سنتاپ باہر تاں ہی نکلن گے جس شبد اندر پرویش کرے گا، نانک بھگتاں سدا وگار، سنیے دکھ پاپ کا ناس، سن کے ہی منک سدھ بن جاندا ہے، پیر بن جاندا ہے، ناتھ بن جاندا ہے، گینی بن جاندا ہے، دانی بن جاندا ہے، اتنا پاون ہو جاندا ہے کہ اٹھاٹھ تیرتھ بھی اس تو صدقے کیتے جا سکتے ہیں، سنیے اڑسٹھ کا اسنان، اتنا پاون ہو جاندا ہے، وہ تو اتنا پوتر ہو جاندا ہے جی کدھرے سنے، بھوجن دی برکی منہ دے راہی اندر پرویش کر دی ہے، وہ پچ کے منج بن دیے، خون بن دیے، ماس بن دیے، شریر دی شکتی بن دیے، توانائی بن دیے، اندریاں دا بل بن دیے، گرو دا شبد کنا دے راہی اندر پرویش کرتا ہے، یہی سمادھی بنتا ہے، یہی آنند بنتا ہے، یہی دیوی گن بنتا ہے، یہی پرم شکتی بنتا ہے، یہی روحانی طاقت بنتا ہے، پر شبد تے کنا دے راہی اندر پرویش کرے گا، اور ادوں پرویش کرے گا جد کوئی سنے گا، اور سنے گا اوہی جس دا دھیان پورا اکاگر، نہیں تے کون سنتا ہے، شوقیا لوکی اپنے گھر دے وچ بھی اکھنڈ پاٹھ رکھا لیندے نے، پر جس کمرے دے رکھا دے نے اتھے وڑنا ہی بھول جاندے نے، کدھر سننا نہ پی جائے، کون سنتا ہے، کٹھن ہے، منک پتر نو سن سکتا ہے، متر نو سن سکتا ہے، پتنی نو سن سکتا ہے، پتی نو سن سکتا ہے، گرو نو سننا اوکھا ہے، کٹھن ہے، کارن گرو دی گل گرو دی وچار ساڈے وچاراں نال تال میل نہیں کھاندی، ساڈے وچاراں چ کام گرو دے وچاراں چ رام، ساڈے وچاراں چ کرودھ گرو دے وچاراں چ دیا، ساڈے وچاراں چ ہنکار گرو دے وچاراں چ نرنکار، نرمانتا ونمرتا تال میل نہیں بیٹھتا، واجے دی سر ایک پاسے جائے تبلے دی سر ایک پاسے جائے کدن تال میل نہیں بیٹھے، تال میل نہیں بیٹھے، تال تبلا سر تال دوہاں دا میل تے بیٹھنا چاہیے، سر کسے پاسے جا رہی ہے، تال کسے پاسے جا رہی ہے، گرو دے وچار کچھ اور ساڈے وچار کچھ اور، تال میل نہیں بیٹھ دے، اور کہندے نے جتھے تال میل بیٹھ جائے رس بنتا بھی اتھے ہی ہے، ورنہ رس نہیں بنتا، اور کسے دن کیرتن سندے ہاں کسے نو رس آ گیا ہے تال میل بیٹھ گیا، اول تے میں دیکھے ہے کیرتن دا رس تے کسے نو ورلے نو ہی آمدہ ہے، لوگ سوراں دے آوازاں دے اگلے دے رنگ روپے چی یا ویرت دیاں ساکھیاں چی پھس کے رہ جاندے ہیں، جنہاں دا اتہاس نال بھی کوئی مطلب نہیں، سچائی نال بھی کوئی مطلب نہیں، میں تے اتھے تک دیکھے اتنی نیوی لوکاں دی سروت، یہ کس طرح گرو نو سننگے، یہ کس طرح گربانی نو سننگے، یہ بانی
बिरलो विचार सी देखो गुरमुख होए। सच दे विचार फोकियां साखियां नहीं, और जेड़ी साखी गुरु ग्रंथ साहब दी विचारधारा ते पूरी नहीं उतरदी उस दी सच्चाई है किथे, हकीकत है किथे। खैर मुख्तसर जो मैं अर्ज करा, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे विचारां विच निरंकार है, दैवी गुण ने ईश्वरी गुण ने, ये सुन के ही अंदर प्रवेश कर देने। शब्द अंदर प्रवेश करेगा समाधि बनेगा, दैवी गुण बनेगा, और समझ आ जाएगी उस परिपूर्ण परमात्मा दी, अकाल पुरख दी। किस अकाल पुरख दी? जिदे बारे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने, अनेक हैं फिर एक हैं। जो एक होंदा होया अनेक है ते अनेक होंदा होया एक है, इति पहली हो गई। वो अनेक भी है, वो एक भी है, वो एक भी है, वो अनेक भी है। हाँ, वो आकार रहित है, वो आकार वाला भी है, वो सरगुण है, वो निर्गुण है, निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कलाधार जिन सगली मोही। वो निर्गुण रूप दे एक है, वो सरगुण रूप दे अनेक है। वो एक तो अनेक है और अनेक तो एक है। कदी जगत दे बगौर मुताला करके देखना, सब कुछ अनेक है, एक कुछ भी नहीं है। मनुख अगर बारों कुछ एकता लेना चाहे तो हो नहीं सकती। आप इतने सारे बैठे हो, सब वख वख हो। मेरे करते एक खेल रचाया, कोई न किसे ही जेहा उपाया। एक जैसा दूसरा नहीं है। लखा मनुखी बच्चे रोज जन्म ले रहे ने, नवा रूप लेके आमदे, नवी आवाज, नवी चाल, और गजब दी गल, नवी ही उंगलियां दी छाप। आप इतने सारे बैठे हो, हर एक दे फिंगरप्रिंट अलग अलग ने, हर एक दे अंगूठे दी छाप अलग अलग। एक दा अंगूठा दूजे नाल मेल नहीं खांदा। इस वक्त जमीन देते कोई 5 अरब दे करीब मनुख ने, इसका मतलब है 5000 अरब अंगूठे अलग अलग ने, और जितने मनुख हो गुजरे ने सब दे अलग अलग, जितने नवे आ रहे ने सब दे अलग अलग। आवाज अलग, चाल ढाल, अगर रंग रूप अलग, एक जैसा दूसरा नहीं है। मनुख की गल छड़ो, एक पहाड़ जैसा दूसरा पहाड़ नहीं है, एक नदी जैसी दूसरी नदी नहीं है, एक दरख्त जैसा दूसरा दरख्त नहीं है। दरख्त की गल छड़ो, एक पत्ते जैसा दूसरा पत्ता नहीं है, एक फुल जैसा दूसरा फुल नहीं है। एक दरख्त नू जे 1000 फल लगे ने, 10000 फल लगे ने, एक फल जैसा दूसरा फल नहीं है। इस चक्कर च ना पैना कि 1000 अंब एक दरख्त नू लगे ने, सारे एको दरख्त दे फल ने तो एक जैसे ने, कतई नहीं। रंग दे, रूप दे, आकार दे, वजन दे, स्वाद दे, लाजमी फर्क होगा। ये गल वखरी है कि वह फर्क साड़ी पकड़ दिच आवे भावे ना आवे, वह फर्क साड़े तौल दिच आवे भावे ना आवे, पर फर्क है। एक जैसा दूसरा परमात्मा बनांदा ही नहीं, पुनरुक्त नहीं करता और रिपीट नहीं करता। कहिंदे ने परमात्मा दे च रिपीटेशन नहीं है, वो कुछ भी रिपीट नहीं करता। और जिस दिन एक जैसा वो दूसरा बनाने लग पाया तो समझ लेना रब भी मुक गया, खत्म हो गया। ऐसा नहीं होगा। एक सूरज जैसा दूसरा सूरज नहीं है, एक चंद्रमा जैसा दूसरा चंद्रमा नहीं है, और एक सूरज नहीं है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, कई कोट ससियर सूर निखत्र, कई करोड़ा सूरज ने, कई करोड़ा चंद्रमा ने, कोई एक है। और आज विज्ञान ने इसकी तस्दीक कर देती है कि गालबन 50 अरब सूरज सड़ी पकड़ दे, सड़ी समझ दे आ गए ने। इतने इस तो अगां भी पसारा हो सकता है। जिस तरह साड़ी उम्र है, सूरजां दी भी उम्र है। कुछ सूरज बचपन दे दौर दे चले, कुछ जवान हो चुके ने, कुछ बुढ़े ने, कुछ खत्म होने वाले ने, मिटन वाले ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनं। सूरज घट रहा है, एक दिन मिट जाएगा। चंद्रमा घट रहा है, एक दिन मिट जाएगा। धरती घट रही है, एक दिन मिट जाएगी। मनुख घट रहा है, एक दिन मिट जाएगा। सब कुछ बदता है, घटता है, मिटता है। ये तिने नियम हर एक ते लागू ने, सूरज चंद तारिया ते भी लागू ने। और विज्ञान ऐसा कह रहा है कि एक सूरज, ये सूरज जिस दे थले असी जी रहे हैं ते अपनी जवानी हंडा चुके हैं, बुढ़ा हो गया। 40 लख टन वजन 1 सैकंड दे चिस्ता घट रहा है। घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनं। गुरु अर्जन देव जी महाराज, ये घट रहा है, एक दिन मिट जाएगा। इस दे मिटन नूं ही महापरले कहंदे ने।
एक ब्रह्मण दी परले, एक ब्रह्मण दा खात्मा। बुढ़े सूरज दे थले असी जी रहे, भावें अरबा खरबा इहदी साल उम्र है, लेकिन उम्र है। हर चीज वधदी है, घटदी है, मिटदी है। एक सूरज जैसा दूसरा सूरज नहीं है, एक चंद्रमा जैसा दूसरा चंद्रमा नहीं है, एक मनुख जैसा दूसरा मनुख नहीं है, एक दरख्त जैसा दूसरा दरख्त नहीं है, एक नदी जैसी दूसरी नदी नहीं है। परमात्मा रिपीट नहीं करता, पुनरुक्ति नहीं करता, दोहरांदा नहीं है। और जिस दिन परमात्मा दौरान लग पाए तो समझ लेना परमात्मा भी मुक गया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दाता। वो तो नित नवा है, उस तो जो कुछ भी आंदा है नित नवा ही आंदा है। बहुत लंबे चौड़े पसारे नू ना लईए, लखा मनुखी बच्चे रोज जन्म ले रहे ने, नवी आवाज लेके, नवा रूप लेके, नवे नैन नक्श लेके, नवी अंगूठे की छाप लेके, नवी उंगलियां की छाप लेके। हर बच्चा अलग है, एक जैसा दूसरा नहीं है। मेरे करते एक खेल रचाया, कोई ना किसी ही जिहा उपाया। सब कुछ अनेक है, वक वक है, पर इस सारी अनेकता दे रमे आया एक है, एक है। अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। तू अनेक होंदा होया एक है, और तू एक होंदा होया अनेक है। ऐसा क्यों कीता है परमात्मा ने? वो एक तो अनेक क्यों है? धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का इस संबंधी जवाब कलगीधर पातशाह का। महाराज कहते ने, एक मूरत अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। अनेकता उस एक दा खेल है, तमाशा है। खेल या तो बच्चे खेडते ने खेल, या परमात्मा खेडता है, बाकी खेल नहीं है। जिस दे जित होवे, जिस दे हार होवे, वो खेल नहीं है, वो जंग है। जिस दे नफा होवे, जिस दे नुकसान होवे, वो खेल नहीं है, वो ते धंधा है। मनुखी जगत दे सब तो वड्डियां खेलां ओलंपिक, मेरी दृष्टि वो भी एक जंग है, वो भी एक धंधा है, खेल नहीं है। जिस मुल्क दे खिलाड़ी हार जांदे ने, कहिंदे फलाना मुल्क हार गया है, फलाना मुल्क जीत गया है, ये जंग है या कि खेल है? और जिस मुल्क दे खिलाड़ी हार जांदे ने, सोगवार होके आंदे ने, रोंदे हुए आंदे ने। और जिस मुल्क दे खिलाड़ी जीत जान, नचदे हुए आंदे ने, मुल्क दे चुनां दा स्वागत आंदा है, उन्होंने इनाम मिलते हैं, जैसे किसी मुल्क नू जीत के आए ने, और वाकई नाम भी लिया जाता है, फलाना मुल्क हार गया, फलाना जीत गया। तो ये खेल है कि जंग है? ये खेल है कि धंधा है? ये खेल नहीं है। इसनू मेरी आत्मा ने कतई खेल नहीं मनिया, कतई खेल नहीं। जिस दे जित है, जिस दे हार है, जिस दे हार दी घृणा होवे, जिस दे हार दी बेइज्जती होवे, ते जिस दे जित दा तकब्बुर होवे, उन्हों खेल आखण की की लोड़ है? वो खेल नहीं है, वो जंग है। जिद नुकसान का दुख होवे, जिद नफे की खुशी होवे, उन्हों खेल आखण की लोड़ की है? ये तो धंधा है। खेल बच्चे खेडते हैं, खेल परमात्मा खेलता है। दरिया के कंडे ते, सागर के तट ते बच्चे खेल पे खेडते हैं, रेत के महल खड़े कर रहे हैं, बड़ी मेहनत नाल, बड़ी लगन नाल, बड़ी एकाग्रता दे नाल। तो क्या इन्हां बच्चियां ने इन्हां महलां विच रहना है, जो इतनी मेहनत नाल पे बनाते हैं, इतनी एकाग्रता नाल बना रहे ने? नहीं, खेल है, पर बड़ी लगन नाल, बड़ी मेहनत नाल ये महल खड़े कर रहे ने, महल बन गए ने। इधरों सूरज डुबण वाला है, शाम हो गई है, घर की याद आई है। हसदियां हसदियां रेत के महल खड़े किए सन, हसदियां हसदियां हुण तोड़ रहे ने। बड़ी एकाग्रता नाल बनाए सन, बड़ी एकाग्रता दे नाल तोड़ रहे ने। जब बनाने लगे सन खुश हसदे हसदे, अज मिटाने लगे ने खुश हसदे हसदे। खेल है, तंदा नहीं है, जंग नहीं है। बनाना भी खेल सी, मिटाना भी खेल सी। आवन जान एक खेल बनाया, आ गया कारी कीनी माया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, परमात्मा की दुनिया च भी ओदी दृष्टि जी सब कुछ खेल। जमना एक खेल, मरना एक खेल, नफा एक खेल, नुकसान एक खेल, जवानी एक खेल, बुढ़ेपा एक खेल। क्योंकि जवानी बुढ़ेपे च बदल जाती है, जन्म मरण दे च बदल जाता है, नफे नुकसान दे च बदल जाते हैं, इज्जत बेइज्जती दे च बदल जाती है, जिंदाबाद दे नारे मुर्दाबाद दे च बदल जाते हैं,
खेल तमाशा सुंदरता क्रूपता दिच बदल जाती है, हासे रोणिया दिच बदल जाते हैं, फूल खिलता है मुरझाने का तहैयल लेकर, जिसे हंसता हुआ पाओगे वो परेशान होगा। हासियां दे थले परेशानियां छुपिया पई ने, दुख संताप जो है छुपे पे ने, जन्म दे थले मरण छुपया पे है। खेल तमाशा बनाण लगे हाँ प्रसन्नता है परमात्मा नो, बिठाण लगे हाँ भी प्रसन्नता है। जद बनांदा है तो एक तो अनेक हो जाता है, जद मिटांदा है तो अनेक तो एक हो जाता है। खेल संकोचे तो नानक एक है, जैसे खेल नु संकोच

ज्ञान आज मिल गया है तो ब्रह्म कल मिलेगा, ऐसा नहीं है। दोवें इकट्ठे मिल रहे हैं, दोवें इकट्ठे मिल रहे हैं। जब ब्रह्म दा ज्ञान ब्रह्म दे नाल ही मिलता है तो ब्रह्म दे मार्ग ते किस तरह चलिए, अक्षरी ज्ञान करके। ये अक्षरी ज्ञान मैं थानू सरवण करा रहा, इस करके प्रेरणा मिलेगी। तो इस ते किधरे भरोसा बज जाए ते मनुख चल पवे, चले की उसका ध्यान। अगर एक जवान जवानी च ही उलझिया पे है ते कितना ही पाठ करता हो, कितना सत्संग करता हो, अजे ध्यान अगे नहीं चलिया। ये भी अर्ज कर दें, अजे सुरत अगे नहीं गई। अगांख उतरांग पिछा फेर ना मोड़ा, नानक सिंह अपराध अकाल मिलता तो दोवे कट्ठे मिलते। जिसकी दृष्टि पहले काल ते पहुंच गई, बड़ा महान मनुख है। मनुख अपने विच जन्म नु वेखदा, जीवन नु वेखदा, मरण नु नहीं। ये भी महस कर दे। पंजाब का एक छोटा जिहा कस्बा गुनियाना मंडी बठिंडे दे कोल, भादरों की संगरांद सी ते प्रबंधकां ने मैनूं कह दिता, ज्ञानी जी अज भादरों दे संगरांद की कथा कर दो। हफ्ता मैं रहना सी, मैं ठीक है। तो उस संगरांद की कथा दे च एक पंक्ति है भादरों दे महीने। भादों का मतलब है भादो, छिट्ठे पै गए, पानी दे ठंड हो गए, बरसात हो जाती है, धुप निकल आ गई, गर्म दो बा बा दोए। हर महीने का नाम उसके स्वाद के मुताबिक रखा गया सी, 12 महीने के नाम बिक्री समत के मुताबिक बा दोए। हुणे ठंड हुणे गर्मी, हुणे गर्मी हुणे ठंड। बादलों की छोटी छोटी बारिश होती रहती है, 5 मिनट हो गई, 2 मिनट हो गई, फिर धुप निकलाई, गर्मी हुणे ठंड हुणे गर्मी बाद होए। कई मनुख भी पादरों की तरह आते हैं, गुरुद्वारे बैठे ने बिल्कुल ठंडे शांत, कर गए बढ़तू पा दिता है, उबल गए तप गए। हुणे बड़े आनंदमय बैठे सन, हुणे चिंता तुर हो गए, हुणे बड़ा शांतमय बैठा सी, हुणे क्रोधी हो गया, बाद होए। हुणे ते बड़ी परोपकार दी अंदर बिरतियां कम पईयां करदियां सन, हुण दुराचार। हुणे ते बड़ा मिठा बोल रहा है, हुण बड़ा कुरख ते कौला, पा दोए। बहुते मनुखता बादलों दी तरह है, दो बहान है। एक घंटे दी कथा दे च गालबन मैं 20 मिनट ते बाकी पंक्तियां ते लाए, 40 मिनट एक पंक्ति ते लाए। वो पंक्ति है, हाथ मरोड़े तन कपे स्याहू होवा से। आखरी प्राण आयुर्वेद के मुताबिक, धर्म ग्रंथा के मुताबिक मनुख की नाभी दे च है आखरी प्राण। नाभी नू गंड भी खुल कहिंदे ने, आज काल खुले तेरी गांठड़ी। ਇਹ ਗੰਢ ਦੋ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਦ ਅਕਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਉਸ ਵਕਤ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਲ ਨੇ ਗੰਢ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਮੌਤ ਨੇ ਗੰਢ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਆਜ ਕਾਲ ਖੁੱਲੇ ਤੇਰੀ ਗਾਂਠੜੀ, जैसे नाभी खुलती है ते आखरी प्राण निकलता है, तो शरीर दी जो हालत आती है, गुरु अर्जन देव जी महाराज लिखते ने, हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होवा से। इंज मुठियां बंद आंदियां, दंदियां वजदियां, शरीर ते कंबड़ी छिड़ जांदी है, हिटकी आउंदी है। सियाणे अंदाजा ला लैंदे ने गंढ खुल गए, नाभी खुल गए।

मित्रंत अजंत सतरं दृणंत अनिक माया विस्तीरने आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगणे भरम भ्यान उद्यान रमण महाबिकट असाध रोगणे बैदन पार ब्रह्म परमेश्वर आराधनानिक हर हरे हरे। मनुख दिया बुनियादी मूल कमजोरियां विचों प्रबल कमजोरी अहंकार अहं मैं हां मैं हां मैं हां जिन्ने चिर तक ये मैं रहिंदी है ये अहं भाव रहिंदा है उतने चिर तक ही जन्म ते मरण चलदा रहिंदा है चलदा रहिंदा है। ये जन्म ते मरण दा मूल है ये जन्म ते मरण दा कारण है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान हौमे एहा जात है हौमे कर्म कमाए हौमे एही बंदना फिर जौने पाए। हौमे दा स्वभाव है मनुख जितने भी कर्म करता है अहंकार आशक चाहे वो कर्म धार्मिक ने चाहे वो कर्म सामाजिक ने चाहे वो कर्म राजनैतिक ने अहं मूल है अहं मिश्रित हो जाता है हर कर्म में और वो कर्म जो अहं आश्रित है जन्म का कारण बनता है जन्म मरण का कारण बनता है और ओ अहं दा बंधन फिर जन्म फिर मरण इस तरह अहं जन्म ते मरण दी बहुत लंबी यात्रा विच पा देता है बहुत लंबे गेड़ विच पा देता है। धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा हे पाप आत्मा अहंकार तू जन्म ते मरण दा मूल है। वख वख जीवां विच अपने अपने दोष पाए जाते हैं जैसे असी वेखदे हां हाथी विच काम रोग प्रधान है और पतंगे विच दृष्ट रोग मच्छी विच रसना दा रोग और इसी तरीके नाल भौरे विच नासका दा रोग होने रोग मानुख को दीना काम रोग मैं गल बस कीना दृष्ट रोग पच मुए पतंगा नाद रोग खप गहे कुरंगा हिरन्नो नाद दा कन्ना दा रोग जो जो दीसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। ये रोग बंधन दा कारण बनदे ने ये रोग दुख दा कारण बनदे ने और मनुख दे सारे दुखां दा मूल कारण अहं अहंकार।
अहंकार किधरे स्थूल रूप धारण करता है, किधरे सूक्ष्म रूप, किधरे पदार्थों का अहंकार, किधरे धार्मिक कर्म जो परमात्मा के प्रति किए गए ने उसका अहंकार, किधरे इस जीवन का अहंकार, किधरे उस परम जीवन की प्राप्ति के जो साधन ने उन्हां दा अहंकार। मूल रूप विच ये अस्थूल अहंकार धन आश्रित होंदा है, जोवन जवानी स्वप्न दे आधार ते खड़ा होंदा है, और शक्ति सता ताकत इसके आधार ते खड़ा होंदा है। जोवन धन प्रभता कै मद में अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल की तरह घूम रहा है। जोबन की मस्ती विच, धन की मस्ती विच और सता की मस्ती विच, धन जेब विच होवे या मन की सोचनी विच होवे, जोबनवंत होवे या जोबन की चाह मन विच होवे, सताधारी होवे या सता का चिंतन अंदर चलता होवे, दोहां हालतां पागल हो जाता है। सता पागल कर देती है, सता का चिंतन भी पगला देता है। जोबन पागल पंदी सीमा तक ले जाता है, पर जोबन का चिंतन भी पागलों वाली हालत बनाई रखता है। इसी तरीके नाल धन, धन जेब विच है, धन घर विच है या धन सोचां विच है, विचारां विच है, मनुख ते पागल होवेगा। इसका बहुत वड्डा पागलपन धन आश्रित है, जोबन आश्रित है और सता आश्रित है। तभी पातशाह फरमान कर रहे हैं, जोबन धन प्रभता कै मद में अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल होया फिरदा है। इसे विच अहंकारी अपने आप नू महान समझदा है, दूसरे नू तुच्छ समझदा है। आपस को दी रग कर माने औरन को लग मात, मनसा बाचा कर्मना मैं देखे दोजक जात। हर एक नू छोटा समझदा है, चाहे अगला महान होवे, चाहे स्वयं तुच्छ होवे, अपने आप नू महान समझदा है, उच्चा समझदा है, सब तो उच्चा समझदा है। ईरानी सूफी संत हाफिज फरमान कर देने, दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, जिस दी महफिल दे खुर्शीद ए सूरज एक जर्रा है, एक निक्का जिया रेत दा जर्रा है। दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, खुद रा बजुर्ग दीनम शर्ते अदब नवाशद। उस महफिल विच तू अपने आप नू आखे मैं वड्डा, मैं वड्डा, मैं महान हाँ, जिथे सूरज भी एक निक्के जिया जर्रे वर्गा है, इसकी भी कोई औकात नहीं। पर मनुख दी भुल, मनुख दा अज्ञान, और जितना प्रबल अज्ञानी होवेगा उतना अहंकारी होवेगा। एक उर्दू दा महान शायर इसनों एक होर ढंग नाल भी बयान कर देने, इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इल्म, मैंने ये दर्श पाया अपनी बसीरत से।
ज्ञान भी मूर्खता दे नालों बेहतर है। मूर्खता दा ज्ञान इलम दी जहालत नालों चंगा है, जहालत दा इलम। अगर थोड़ा बहुत कुछ समझे है, आलम होया है, विद्वान होया है, और कई गुणा उस तो वद अहंकार नाल भर गया है, तो अहंकार इस गल दा सबूत है जो इलम है वो अमल विच नहीं, और ए अहंकार मूर्खता ते खड़ा है। इलम के जहूल से बेहतर है जहूल का इलम, ज्ञान भी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता का ज्ञान। अहंकार अज्ञान ते खड़ा होता है, ज्ञानी भी अज्ञानी समझो अगर अहंकारी है। भगत सरमौर श्री रविदास जी महाराज बड़ा सुंदर फरमान कर रहे हैं,

सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर हम दाते ए बुद्ध कभे ननासी कह रविदास सभे नहीं समझसे भूल परे जैसे बोरे इति सारे भूल के पागल हुए फिर देने कौन हम बड कव मैं बहुत वड्डा कवि मेरी कविता महान बस यही जहालत ले फिर दी है कुलीन हम पंडित मेरी कुल बहुत उच्ची तो मैं उच्चा मैं पंडित इस वास्ते मैं महान हम बड कव कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी मैं बहुत वड्डा जोगी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा सन्यासी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा ज्ञानी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा ज्ञानी गुणी सूर हम दाते ए बुद्ध कभे ना नासी मैं बहुत वड्डा सूरवीर मैं बहुत वड्डा दानी कहते ने अहंकार अक्सर गुणा ते ही खड़ा होंगे और गुणवान ही ज्यादा अहंकारी होंगे क्योंकि अवगुणा के आसरे ते अहंकार नो अस्थूल रूप धारण का मौका नहीं मिलता एक गल वखरी है कि मूरख गुण ना होंदया भी अहंकार विच जलदा है पर उसका अहंकार इतना बोझल नहीं आता उसनों इतना बोझल नहीं करता एक गल वखरी है कि वो अहंकार मूर्खता ते खड़ा है अवगुणा ते खड़ा है नानक ते नर असल खर जो बिन गुण गर्व करन इक ना नाद ना बेद इकद नू न किसी प्रकार की विद्या न संगीत दा ज्ञान गे रस रस कस ना जानन इक ना सुरत ना सिद्ध अकल सिर अखर का भयो ना लहन अक्षर दा कोई बोध नहीं अकल दे तल ते जी नहीं रहा संगीत दा कोई बोध नहीं किसे धर्म ग्रंथ दा कोई ज्ञान नहीं लेकिन फिर भी अहंकार नानक ते नर असल खर जो बिन गुण गर्व करन असली खोते ने अहंकार भी पंड चुकी फिर देने पर बड़ा प्रबल अस्थूल अहंकार प्रगट अहंकार ते गुणा ते ही खड़ा होंदा है और अहंकारी दियां अखां अहंकारी दा मस्तक अहंकारी दी चाल स्पष्ट रूप देच अहंकार दी प्रदर्शनी कर दी है भगत कबीर कहंदे ने चलत कत टेढ़े टेढ़े अहंकारी सीधा चल ही नहीं सकता अगर सीधा चले तो उसकी चाल का पता नहीं चलता टेढ़ा चलता है ताकि लोगों दियां निगाहां मेरे ते आवन निर्माण मनुख चाहता है मैं परमात्मा की निगाह थले आ जावा अहंकारी चाहता है सारिया दियां निगाहां मेरे ते आवन सब मैनू ही देखन चलत कत टेढ़े टेढ़े अस्त चरम बिस्टा के मुंडे दुर्गंध ही के बेड़े तू है कि हड्डियां देते चढ़े होया मांस मांस देते चढ़ी हुई चर्बी और चर्बी देते लिपटी हुई खलड़ी और किया तू हड्डियां का मान जोबन जवानी का मान हड्डियां का मान मांस का मान मिंज दा मान और खलड़ी दा मान इस तो अलावा और है कि
एक आया कि इतनी नाबालिग है, कोई भी पवित्र चीज इस नल छू जाए मैली हो जाती, और इस काया का अहंकार धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज प्रमाण कर देने, कर्पूर बहुत सुगंधा पर्स मानक देहं मलिनं मजा रुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो। कपूर ते चंदन जैसियां फुल्ला जैसियां पवित्र वस्तुआं मनुखी तन नाल छूंदे आ स्पर्श करदे आ मैलियां हो जांदियां ने, मजा रुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो। है कि दुर्गंध खून मिंड मास कलड़ी, अज्ञानी एवं तन का अहंकार करता है। जो बंदा अहंकार करता है फिर धन का अहंकार, धनवंता होए क्या को गर्वे, जहां सब किस तिसका दिया दरवे। पुरखा ईश्वर वसीला ना बने धन कितने, उस दे वसाहिल नाली सब कुछ प्राप्त होता है, और सब तो वड्डा वसीला है ए तन, और तन उसकी देन है, ये दिमाग उसकी देन है, और ये तन ते मन दे आसरे ते तू धन कट्ठा कर लिया तो वसीला ते प्रभु है, वसीला ते परमात्मा है। पर धन दा अहंकार सता प्रभुता, इसका अहंकार अगां चलिए ता अहंकार नू बैठन वास्ते कोई गुणा दा सिंघासन चाहिए। दान दा अहंकार, ज्ञान दा अहंकार, सेवा दा अहंकार, बड़े नवे तो नवे सिंघासन अहंकार अपने बैठन लई बनाई दा है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है। और गुणा दे आसरे ते बैठ के कोई प्रसन्न बड़ा होंदा है, क्योंकि जगत तो जस मिलता है, जगत तो मान मिलता है, वो मान इस दे अहंकार नू होर वधांदा है, होर वधांदा है। देखने विच आया धन है तो धन ते अहंकार बैठ गया, फिर धन दा त्याग है तो त्याग ते अहंकार खड़ा हो गया, हुण त्याग दा अहंकार। सता कोल है सता दा अहंकार, सता दा त्याग कर देता है हुण त्याग दा अहंकार। ऐसा अक्सर देखण नूं मिलदा है, पहले जो कोल है उसका अहंकार, फिर जो कोल है उसका त्याग किया है, उस त्याग का अहंकार। अहंकार नवे तो नवे रस्ते लगता है, और अहंकार तो बचना औखा। जिहड़ा सिंघासन भी असी निरंकार नूं बिठाने लई बनाने हां अहंकार बैठ जाता है। दान दा सिंघासन बड़ा सोहना बनाया सी, भगवान आके बैठे, निरंकार आके बैठे, अहंकार आके बैठ जांदा। सेवा कर रहे सी ताकि सेवा दे सिंघासन ते प्रभु आके बैठे, नहीं अहंकार आके बैठ गया। सिमरन माला दे राहीं रसना दे नाल जप दे राही आरंभ कीता, ताकि ए जप ए माला दा फिरना प्रभु प्राप्ति दा साधन बन जाए, पर इससे भी अहंकार खड़ा हो गया। अहंकारी नू दूसरे तुच्छ प्रतीत आउंदे ने, अहंकारी अपने आप नू महान समझदा है, और कई दफा अहंकार
इतनी चरम सीमा ते पहुंचता है उदी दृष्टि च निरंकार भी कुछ नहीं, वो स्वयं दावा कर उठता है मैं ही निरंकार दावा कीता सी हर नाकश ने, मैं परमात्मा, कौन होता है परमात्मा। दावा कीता सी नमरूद ने, मैं हाँ खुदा, कौन होता है खुदा। अहंकारी अपने तो वड्डा किसी नूं भी मनन नूं तैयार नहीं। इस वास्ते अहंकारी का सिर झुकदा ही नहीं, झुकदा ही नहीं, आकड़िया रहिंदा सिर, और उसके सामने माता छोटी है, पिता छोटा है, गुरु छोटा है, प्रभु छोटा है, कोई भी वड्डा नहीं, सिर्फ वो खुद वड्डा बनता है और वड्डा होके दिखाने की कोशिश करता है। सारी भज दौड़ अहंकार लई है, निरंकार लई नहीं। किस तरह मैं सारे लोगों दी निगाहों का मरकज बन जावां, केंद्र बन जावां, हर एक की निगाह मेरे से टिके और हर एक का माण मैं हो जावां, मेरे ते माण करन, और इस तरह मेरा अहंकार शिखर ते पहुंचे। सारी भज दौड़ अहंकार दी है। इंज कह लईए यात्रावां ते दो ही ने, अहंकार दी यात्रा, निरंकार दी यात्रा। निरंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है तू है तू है तू है तू है। अहंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है मैं हाँ मैं हाँ मैं हाँ मैं हाँ मैं हाँ, एक जन्म मरण का कारण बन जाती है। तू है तू है तू है, एक जन्म मरण को मिटा के प्रभु का रूप बना देती है, बूंद सागर में लीन हो जाती है, ईश्वर का रूप हो जाता है मनुख। भगत कबीर कहते हैं तू तू करता तू भया मुझ में रहा न हूं, जब आपा पर का मिट गया जत दे।

बांदा रूप बना लेता। मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ, ये शैतान का रूप बना देता। शैतान ही है वो जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है। भगवान का रूप है जिसके रोम रोम देख, जिसदियां सारिया क्रियावां देख भगवती प्रदर्शित, भगवती नुमाइश हो रही है, परमात्मा ही प्रकट हो रहे हैं। श्री रविदास सही कह रहे हैं, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, जब मैं सी तू नहीं सी, हुण तू है मैं नहीं, कि तू ते मैं दोवें इको सिंघासन ते नहीं बैठ सकते। महाराज की बाणी का फरमान, हौमें नावे नाल विरोध है, दोए न वसे इक ठाए। ते मैं ते तू दोवें कठे नहीं रह सकते, या तू है या मैं हाँ। अहंकारी की सारी साधना है मैं हाँ, मैं हाँ, उदी सारी भज दौड़, उदी सारी किरिया, उदी सारी तपस्या, उदी सारी मेहनत, किस कारण हो रही है? मैं पर विनम्र मनुख दा, संत दा सब कुछ तू हासिल है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। उठे मैं भी कोई चिंगारी नहीं रहती जिस विच गुण भस्म हो जाते हैं। बस तू ही, तू ही, तू ही। एक आलम का कहना है, अज राह चनार, अज राह चोनार, कि सलामत न कुनत, इस ढंग नाल चल रस्ते देच, कि किसे दा सिर मजबूरन ना झुके, इतना आकर के ना चल। बा खलक चुना जी के कयामत न कुनद, खलकत दिच इस ढंग नाल रह कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना हो। दर मस्जिद गर रवि के चुना जाओ के तोरा, दर पेश न खुआनद और इमामद न कुनद, कि किधरे इबादत करनु तेरा जी करे तो नमाजियां दे पिछे होके नमाज पढ़ी, किधरे अग्गे होके नहीं। ऐसा ना हो कि तेरे अंदर इमाम बनन दा चाव पैदा हो जाए और नमाज पढ़ने आ मस्जिद दे भी तो कह उठे कि मैं ही सब तो वड्डा, मैं ही सब तो वड्डा। अक्सर धार्मिक मंदिरों दे भी तो लोग प्रधानगी लभदे ने कि प्रधान ते परमात्मा है, या फिर जिसका मिट गया सारा अहंकार वो प्रधान हो सकता है। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभमान, जो संगत दे चरणा दी खाक हो गया मस्तक दा तिलक ते फिर ओही बनता है। पर जो पहले ही मस्तक दे ते असवार होके बैठा है, शायद उसनु मखलूक दे कदमा दे भी जो है ठां ना मिले, पर अहंकारी ते सिर ते बैठण दी कोशिश करता है। अहंकारियां दे आसन सिंघासन लोगों के सिर के उत्ते ही होंगे। सारी राजनीति, सारी सता अहंकार आश्रित है और अहंकारी सिरां ते ही बैठता है। कई दफा सिर हिल जाने ने ये थले गिरता है। इस वास्ते कहने गरूर का सर नीचा, आखिर जो लोगों के सिर झुकाना चाहता है एक दिन इसका सिर नीवा होके रह जाता है, अहंकारी शर्मसार होके रह जाता है। इस वास्ते अहंकार परमात्मा दे विचकार एक बहुत वड्डी दीवार है, एक बहुत वड्डी दीवार है। सारी धार्मिक साधना इस दीवार नू तोड़न वास्ते है। पर अहंकार बड़ा चलाक है, ये धार्मिक साधना नू भी अपना सिंघासन बना देंदा है। बैठना सी उसते प्रभु ने आप बैठ जाता है,

करते ज्यों कुंचर स्नान। सारी धार्मिक साधना हाथी दा इशनान बन के रह जाती है। सारे धर्म नो अहंकार अधर्म विच बदल के रख देंदा है और इस तरह अहंकार तो पैदा ए अधर्म जन्म ते मरण दा कारण बनदा है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, हे पापात्मा अहंकार तू जन्म ते मरण दा मूल है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा नितरं तजन्त सतरं दृढ़न्त अनेक माया विस्थिरने। यह अहंकार तेनू दुश्मन बनाने ही आंदे ने, मित्र बनाने की तेनू जाच नहीं। अहंकारी दे मुंहों ना निकलदा है, अहंकारी हां नहीं कर सकदा। जब सारा माहौल ही ऐसा होवे और हां कहण दी सहूलियत भी होवे, कुछ बिगड़दा भी ना होवे, तां भी हां नहीं कहेगा, ना ना। जितनी ताकत ज्यादा होवे उतनी जबान ते आ जांदा है ना नहीं ना नहीं। कोई कम है और अक्सर कम कार लई लोकी सरकारी दफ्तरां दे जांदे ने। जितनी जिस कोल समर्था है ताकत है उस हिसाब नाल ही वो ना करता है, ना करके दसना चाहता है मैं तैनू रोक सकदा, मैं तेरे काम नू रोक सकदा। अहंकार इस महीने विच कि भारत बहुत अहंकारी देश हो गया है। ना ना ना, हां कहना ही भुल गया है। हां कहने विच इन्हू अपना छोटापन प्रतीत होंदा है। जायज गल भी नौकर ने कह दिती है, जायज मंग भी एक नौकर ने मंगी है, तां भी मालक कहिंदा है ना। नौकर दी हां च हां मिला गई है ना। अहंकारी ना करदा है, सब नू ना करदा है और जिथे तक इसकी सता है उथे तक ना करदा है और जितना ना ना करी जांदा है उतनी दुश्मनी बनती है। तो पातशाह ठीक कह रहे ने, मित्रंग तजंत सतरंग दृणंत अनेक माया विस्तीर ने। अहंकार दी माया दा इस तरीके नाल विस्तार होंदा है, इसे दुश्मन ही बनते हैं। ईरानी सूफी संत जनाब हाफिज कहते हैं

अरारद निहाले दुश्मनी बरकुन किरंजो बेशुमार आरद। दोस्ती दा बूटाला मिलाप दा बूटाला जितों खुदा दा मिलाप चाहना है जी किधरे भुलेखे नाल तो दुश्मनी दा बूटा लावी बैठा है इसनों आज ही जड़ों पुट दे सिवाय दुखां दे सोल तो इस बूटे नूं होर कुछ भी नहीं लगता। अमृत फल खाना चाहना है दोस्ती दा बूटा ला। भगत आत्मदर्शी मनुख ते सारे जहान नूं मित्र बना लैंदा है। सबको उम्मीद हम आपन की ना हम सब ना के साजन। किस तरह सारी कायनात नूं उसने मित्र बना लिया पशु पक्षियां तक नूं जड़ चेतन सब नूं अपना मित्र बना लिया। जिंदगी ते बड़ी छोटी है दुनिया बड़ी वड्डी है सारियां नूं मित्र बनाया आखिर किस तरीके नाल। गुरबाणी ढंग दसदी है इक सज्जन सब सज्जना इक वैरी सब वाद। जद उस एक नू सज्जन बना लैंदा है ते एक नाल सज्जनता दा जद रिश्ता जुड़दा है तो सारी अनेकता उस एक दे आसरे ते खड़ी है अनेकता भी सारी सज्जन बन के रह जांदी है। जीवन धन हो जांदा है कहिंदे मित्रां विच जीवना स्वर्ग विच जीवना है दुश्मनां विच जीना नरक विच जीवना है। नरक ही भोग रहे ने ओ जो कहिंदे गलियां दे कख भी वैरी ने पर स्वर्ग दे चो ने जिन्हां ने शैतान नूं भी मित्र बना लिया है दुष्टां नूं भी मित्र बना लिया है। सब मित्र सब को उम्मीद हम आपन की ना पर ये युगत अहंकारी दे कोल नहीं आउंदे। अहंकारी जे अस्थूल ढंग नाल नहीं अगर उदारमक है तो सूक्ष्म ढंग नाल चोट पहुंचावेगा। बड़ी सुंदर एक गाथा है। एक संत बैरागी जंगल विच कुटिया बना साधना विच लीन है कि साधना सारी सिर्फ अहंकार नूं मारन वास्ते है और जिस दिन अहंकार मरदा है निरंकार प्रगट होंदा है। अहंकार जितने चिर तक है जन्म ते मरण चलता है और जैसे निरंकार प्रगट होता है जन्म मरण मिट जाता है। सरा साधना विच लीन ये योगी ये संत। एक राजा आया दर्शना लई तपस्या साधना दी बड़ी दूर दूर तक धुम पई। बहुत तपीश्वर है बहुत जपीश्वर है बड़ा संजमी है। राजा दर्शना लई आया है दर्शन कर राजा प्रसन्न होया है। उसने एक बड़ी कीमती मोतियां नाल जड़त पोशाक चोला भेंट कीता। पानी साधु कहन लगा हुण असी इस तरह दे चोले पहनना छड़ दिता है असी कि तन देते सिर्फ कमली धारण कर रहे हैं। पर वो राजा कहन लगा आखिर मैं खाली हथ किस तरह जो है आपदे दर्शन करा ये नजराना है ये भेट है चलो नहीं पाना आप रख लो दे देना किसे नू। राजा ये नजराना रख के चला गया। कुछ दिना बाद इस त्यागी वैरागी साधु दा एक मित्र बूढ़ा मित्र बचपन का दोस्त और वो भी साधु से वो भी तपस्या कर रहा से मिलन ले आया है। लालवन 10 मील दी वाट पैदल चल के ये जंगल संत की
कुटिया कोल पहुंचे है। दूरों वेख इस संत ने स्वागत कीता है और सत्कार मान नाल बिठाया है। रस्मी गुफ्तगू तो बाद जो भिक्षा तो भोजन आया सी वो छकाया है। रात बड़े सोहने ढंग नाल प्रभु चर्चा करदे बतीत हुई। सवेरे इस बैरागी साधु ने कोई तीन घरां दे जाना है नाल दे पिंड, उन्होंने अपने घरां दे चरण पाण लई बुलाया है। ये बैरागी साधु आए हुए मेहमान मित्र नूं कहिंदा है भी इत्थे कल्लियां बैठे हां तुसीं तंग हो जाओगे, आओ मेरे नाल चलो, मैं तीन घरां विच जाना है, तुसीं मेरे नाल चलो फिर वापस आ जांदे हां। इस बैरागी साधु ने वो जो राजे ने कीमती चोला दिता सी मोतियां नाल जड़त बड़ा खूबसूरत वो कट के दिता और आखे ए पा लो कस्बे दे चले हां तुसीं पा लो। वो साधु कुछ बेनियाज ये मेहमान साधु और ये मित्र साधु जो आया है रमजी मनुख हरक सोग तो उच्चा मनुख पहन लिया उसने वो चोला कीमती चोला। जैसे दोवें कस्बे के अंदर दाखिल होते ने सारियां दी निगाह उस चोले ते और चोला जिस साधु ने पहने है उस ते। दुखी हो गया है बैरागी साधु है, कल तक मैं जब इस कस्बे विच आउंदा सी सारियां दियां निगाहां मेरे ते, अज ये निगाहां फिर गईयां ने, अज ते मेरे मित्र ते चोला दिता है लेकिन अंदर ख्याल आया है ये ते मेरे नालों महान प्रतीत होंदा है, सारे इसनों पे वेख देने खैस जिस घर विच जाना गए। आओ भगत होई सन्मान नाल बिठाए गए और घर वालिया ने सुभावक पूछिया उस बैरागी साधु तो ये जो नाल आए ने ये कौन ने, क्योंकि सारे घर वाले अखां फाड़ फाड़ के उसनों वेख रहे ने। सोना चोला पहने होया है, मुखड़े ते शांति झलक दी है, निर्माणता बिखर दी है, रहस बिस्माद अखां दे विच है, तो सारे घर वाले उस तों प्रभावित ने पुछदे ने संत जी ये नाल फड़े कौन आए ने। दुख तो के कहिंदा है मेरे मित्र ने कल आए सन, मेरे बचपन दे दोस्त ने, साधु ने साधना करदे ने, बड़े ज्ञानी ने, जपीश्वर ने तपीश्वर ने, पर ये जिहड़ा चोला है ना ये मेरा है। हुण इस ढंग नाल ते तारफ नहीं कराईदा लेकिन अहंकार उबल पिया, बुलवा दिता अहंकार ने मेरा है चोला मेरा है। खैर जब इस घर तो रुखसत होए उस मेहमान साधु ने कहा मित्र तू कपड़े पवा के भी मैनू नंगा कीता, चोला पवा के भी तू मेरे कपड़े उतारे, कोई इस तरह तारुफ कराई दा है। खैर माफी मंगण लग पया, कहन लगा नहीं अचानक मेरे मुंह में बोल निकल गए तुसी बुरा ना मनाओ बुरा ना मनाओ।
दूसरे घर गए। दूसरे घर वाले भी निगाह इस साधु पे अखां विच रमज है, बिस्मात है, चेहरे की शांति है। और सब तो वड्डी गल जिस तो ये घर वाले प्रभावित हो रहे हैं, इतना कीमती चोला, इतना सुंदर चोला, तो दूसरे घर वाले ने भी यही पूछे, संत जी ये नाल कौन महात्मा आए ने, ये कौन ने? तो एकदम बोल पे, मेरे बचपन के दोस्त ने, बाल सखा ने और साधु ने, तपस्या करने ने, ज्ञानी ने, रह गई इस चोले की गल। ये चोला मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, इस दे ची वो कह गया है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। खैर उस घर तो जो निकले ये बैरागी साधु फिर माफी मंगता है, मित्रा मैनु इस तरह भी नहीं कहना चाहिदा सी, पर निकल गई है गल, तू सहन कर ले, बर्दाश्त कर ले, हुण मैं नहीं कहांगा। तीसरे घर गए, आओ भगत होई, बिठाए गए, पर वो चोला तीसरे घर दे भी सारे मनुखां नूं प्रभावित कर रहे हैं, नर नारी बच्चे सब प्रभावित उसे साधु नूं देख रहे हैं। सवाल पूछ लिया है, संत जी ये नाल कौन आए ने, ये केड़े संत ने? तो हुण तारुफ करांदा है, मेरे बाल सखा मित्र ने, जपीश्वर ने, तपीश्वर ने, ज्ञानी पुरुष ने, पर रह गई इन्हां कपड़िया की गल, इस चोले की मैं इसकी गल नहीं करनी। ना गल करके भी कर गया, जब उस तीसरे घर तो रुखसत होए, कुटिया च पहुंचे, इस मेहमान साधु ने, इस दोस्त साधु ने चोला उतार के अग्गे रख दिता, आखिया तीन दफा तू नंगा कीता है, पहले अपना चोला, हुण चौथी दफा मैं आप ही उतार देना, तीन दफा तू उतरवाया, तीन दफा तू लगन कीता है। अहंकारी अपने मित्र का भी मान सम्मान बर्दाश्त नहीं कर सकता, अहंकारी अपने गुरु की महानता भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वो मित्र नु छुपाएगा। मां बाप गुणवान ने तो उन्होंने पिछे सुटेगा, विद्या गुरु है या अध्यात्म गुरु है, उसनों भी हंकारी छुपाण की कोशिश करेगा, पिछे सुटेगा। महाराज की बाणी बड़ा सुंदर फरमान कर दिए, जो गुरु गोपे आपना ते नर बुरे आरी। ये बड़े बुरे पुरुष होंगे ने हंकारी, गुरु को भी छुपाते हैं, क्यों? फिर मेरी मैं, मेरा वडपना फिर कित्थे? तो मित्र नूं छुपांदे ने, पुत्र नूं छुपांदे ने, अगर गुणवान है मां बाप नूं पिछे सुटदे ने, सिर्फ अपने आप नूं ही अगे करना इन्हां दी जिंदगी दा लक्ष्य है। और यतन कोशिश ये भी आती है, रब नूं भी पिछे सुटीए, परमात्मा नूं भी पिछे सुटीए। और नाकश ने पिछे सुटन की कोशिश की सी, नमरूद ने कह दिता सी कौन होंदा है खुदा, मैं खुद खुदा हां। तो अहंकार अपने तो वड्डा किसे नूं भी नहीं मन सकता, अहंकार जीवदा है मैं आश्रित तू तो बिल्कुल भूल जाता है। एक उर्दू शायर ने बड़ी सुंदर नजम लिखी है, बकरे के बोल नूं अग्गे करके, कि बकरे का बोल है मैं मैं मैं,
ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਖਰ

के गर्दन पर छुरी कसा बने। कसाई दे छुरे हेठ आ गया, ने जबा कर देता, सिर वट देता। गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ लूटा कुछ पिस गया कुछ बिक गया बाजार में। रह गई तांते फिकते मैं।

आंद्रा रह गईयां, सुट दतियां गईयां, बाकी ते सब कुछ कम आ गया, खल कम आ गई, मास कम आ गया, हड्डियां भी पिस गईयां, कम विच वर्तियां, केवल आंद्रा बच गईयां। ये नदाफ चुक के ले गया जो रूई पिंज देने धुनकी दे नाल, और धुनकी जिहड़ी तंग लाई जांदी है वो बकरे दी आंत आउंदी है, अंदर आउंदी है। ले गया नदाफ से धुनकी बनाने के लिए, ये आंदरा ही रह गई सुन।

लिए जरब की सोटों की जिस दम तांत घबराने लगी। उस तांत देते उस आंत देते नदाफ जोरदार सोटा मारदा है, बस उस नाली रूपिंगी जांदी है। जरब

0: संत संग अंतर प्रभ डीठा
1: ना प्रभु का लागा मीठा
0: सगल समिग्री एक घट माहे
1: अनक रंगना ना दृष्टा है
0: नौ नदी अमृत प्रभ का नाम
1: यही मैं इसका विश्राम
0: सुन समाध अनहद तहनाद
1: कह न जाइए चरज विस्मार
0: तिन देखिया जिस आप दिखाई
1: नानक ते दर सो जी पाए
0: सो अंतर सो बाहर अनंत
1: घट घट प्याप रहा भगवंत
0: धर्म माही आकाश पयाल
1: सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल
0: मन दिन पर्वत है पार ब्रह्म
1: जैसी आज्ञा तैसा कर्म
0: पवन पानी दा संतर माहे
1: चार कुंट दा दिसै समाहे
0: इसके भिन्न नहीं को ठाऊं
1: गुर प्रसाद नानक सुख पाओ
0: वेद पुराण सिमरत मैं देख
1: सस्य सुर न खतरे मैं एक
0: वाणी प्रभु की सबको बोले
1: आप डोल न कब हूं डोले
0: सर्व कला कर खेल है खेल
1: बोल न पाइये गुणे अमोल
0: सर्व ज्योत मैं जाकी ज्योत
1: धार रहे हो स्वामी ओत पोत
0: गुर प्रसाद परम का नास
1: नानक तिन मैं एहो विसास
0: संत जना का देखन सब ब्रह्म
1: संत जना के हृदय सब धर्म
0: संत जना सुने शुभ वचन
1: सर्व व्यापी राम संग रचन
0: जिन जाता तिसकी एह रहत
1: सत वचन साधु सब कहत
0: जो जो होए सोई सुख माने
1: कर्ण करावन हार प्रभ जाने
0: अंतर बसे बाहर पियो ही
1: नानक दर्शन देख सब मोही
0: आप सत किया सब सत
1: जिस प्रभ ते सगली उत्पत
0: इस भाव है ता करे विसार
1: इस भाव है ता एकंकार
0: अनक कला लखी न जाए
1: जिस भाव है तिस लए मिलाए
0: कवन निकट कवन कही है दूर
1: आपे आपे आप प्रभुर
0: अंतरगत जिस आप जनाए
1: नानक तिस जन आप बुझाए
0: सर्व भूते आप वरतारा
1: सर्व नैन आपे खनहारा
0: सगल समग्री जाका तना
1: अपन जस आप ही सना
0: आवन जाने खेल बनाया
1: आज्ञाकारी कीनी माया
0: सब के मत अलिप्तो रहे
1: जो किस कहना सो आपे कहे
0: आज्ञा आवे आज्ञा जाए
1: नानक जापा वैता लय समाए
0: इससे होई सुना ही बुरा
1: उरे कहो किने कश करा
0: आप भला करतूत आत्मी की
1: आपे जाने अपने जी की
0: आप साज धारी सब साच
1: बोत बोते अपन संग राच
0: ताकि गर्मित कही न जाए
1: दूसर होए ता सोजी पाए
0: इसका किया सब प्रवान
1: गुर प्रसाद नानक हो जान
0: जो जाने ते सदा सुख होए
1: आप मलाए लए प्रभ सोए
0: ओ धनवंत कुलवंत पतवंत
1: जीवन मुक्त जस हृदय भगवंत
0: धन धन धन जन आया
1: जिस प्रसाद सब जगत तराया
0: जाने अमन का यह सुआ
1: जन के संग जित आवे नाम
0: आप मुक्त मुक्त करे संसार
1: नाम।

गहने पौन पानी पैसन तचान सुरजता सगली धरती मातन वर्तन सरजन जा नानक मूसे ज्ञान भी होनी खाए गया जमकाल महला पेला वन चेले नचन गोरे पैर हलान फेरन सिर उडुडरावा चाटे पाए देखे लोक से कर जाए रोटियां कारण पूरे ताला पिछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे नाम निरपो निरंकार सच।

दे दे मंगे से सगुना छोकरे संसार चोरा यारा ते कुड़िया रखा रा बेकार एक होंदा खाए चले जाओ तिना बिकाई कार जल था जिया पुरिया लोहा।

पौड़े बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है जिन विच हो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चित लाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता।

पौड़ी सेव की दिशन तो खे जिन्हें सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सो के धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

पौड़ी सच्चा साहेब एक तुझने सचो सच बरताया, जिस तू दहेज से मिले सच ता तिने सच कमाया, सतगुर मिलिए सच पाया, जिनके हृदय

0: पहला पर गड्डी लदी है पर भरिए साथ पर बेड़ी पाई है पर गड्डिए खात पढ़िए है जेते बरस बस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेके एक गल और हो में जखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया तेता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या

0: काल पूर्व कल काल बेताल बियो बीज बतले के अब क्यों उपेदार जे को रुपी हुरत होए नान पाहे बारा कोरे रंग ना सोए पैवज खुम चढ़ाइए सनु पतन होए नान पक्ति जे रपे पूरे सोएदा कोए
1: मोहल्ला पहला लब पाप धोए राजा मेहता कूड़ हुआ शिकदार काम ने इज्जत पूछिए बह बह करे विचार अंधी रजत ज्ञान होनी पाहे प्रेमरदार ज्ञानी ने चेवा देवा विरूप करे सिंगार उच्चे खुके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजर संजय करे प्यार धर्मी धर्म करेगा वा वह मंगे मुख द्वार जति सदा वह जुगत न जाने है छड़ बह है कर बार सबको पूरा आपे होवे कठ न कोई आखे पत प्रवण पिछे पाइए ता नानक तोलिया जापे
0: मोहल्ला का सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारिया करता करे सोए अगे जात ना जोर है।

0: तुम्हा पुरा तपे का सात गेर तुम्हा हो काजुगरा थगन का कूड़ा गैर तुम्हा हो
1: पहला शाम कहे सितंबर समय सच में ऐसा सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पठानी अमल किया।
1: चार वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाप अब्द करनी।

नानक कूड़ रहया पर भो। मथे टिका तेड़ धोती का खाई, हाथ छुरी जगत कसाई, नील वस्त्र पैर होवे प्रभा।

महला पहला जे कुर सूतक मनिए सब ते सूतक होए गोया ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अन के जिया बाज ना कोए पहला पानी जीव हज थरिया सब कोए सूतक क्यों कर रखिए सूतक पवेर सोए।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.
2: Are patapan hai, japan hai. अकलंक रहते हैं सर्वा कृत हैं करता कर है हरता हर है परमात्म है सर्व आत्म है आत्म बास है जास के जास है पुजांग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्य नमो

रूपे नम इंद्र इंद्र अनादंभ भूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी तरकाले त्रिपंगी तरकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अज अल अप है अब अपू अजू अनास कास गंज पंज लख पख काल दयाल लेख अपेख अनाम काम गहट नाथ परमाथ अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामं बेपूते समस्तुल स्वरूपे को कर्मं प्रणासी सो धर्मं बेपूते सदा सचदा नंद सतरंग प्रणासी करिमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विभूते गजायब अग्नि में हरियं करियं करिमल रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते

मतंगन मान मलेंगे, श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बड़े आर अवचार हिसार की धार पछैया, तोर तदेश मलिंद मवासन मातिक जान के मान मलैया। गाड़े गड़ान के तोड़न हर सो बात नहीं चाक चार लवैया, साहिब साहिब श्री सब को सिर नायक जाच कने सो एक दवैया। दानव देव फनिंद ने साचर भूत भवेख भवान जपेंगे, जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे। पुन प्रतापन बाढ़ जात तुन पापन कह बहु पुंज खपेंगे, साध समूह पर

0: सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे है सो कच ने कच महला पहला
1: वड्डी वड्याई वड्डा नाओ वड्डी वड्याई सत ने आओ वड्डी वड्याई ने चल थाओ वड्डी वड्याई जाने अलाओ वड्डी वड्याई बुझे सब पाओ वड्डी वड्याई पुछना दात वड्डी वड्याई पे आप नानक कारण कथनी जाए कीता करना सरबर जाए महला।

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 604-349-1313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।
4: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

परिपूर्ण परमात्मा ने मनुख नु दो तन दिते ने, एक अस्थूल एक सूक्ष्म। वो जो सूक्ष्म है वो मन है और जो अस्थूल है वो तन है। रोग अक्सर तन दे तल ते प्रगट होंदे ने और सोग अक्सर मन दे चौंदा है। इस तरह रोग ते सोग दे सारी जिंदगी लंघ जांदी है। सूक्ष्म शरीर सोग नाल ग्रसिया होंदा है और अस्थूल शरीर रोग नाल ग्रसिया होंदा है। सोग किस तरह दूर होवे और सोग की है। चाया सी कुछ हो गया कुछ सोग, मंगी सी कुछ और चीज मिल गई है कुछ और सोग, जाना सी किसे होर पासे पहुंच गए किसे होर टिकाने ते सोग, आवना सी किसे होर ने आ गया कोई होर सोग। मन दी ख्वाहिश तो उल्ट जो कुछ भी हो जांदा है सोग नु जन्म देंदा है। रोज रोज असी जो कुछ चाहते हाँ नहीं आता और उस तो विपरीत हो जाता है तो मन सोग नाल भर जाता है। हर नवा दिन नवे सोगां नू जन्म देंदा है, क्यों कि हर दिन कुछ साड़ी मंग ते होंदी है, कुछ साड़ी चाहत ते होंदी है। ते जद भी उस तो विपरीत हो जाए और बहुत वड्डे पद्धर ते हो जाए तो मन दे तल ते सोग पैदा हो जाते हैं। कबीर कहते ने, जो मैं चितवो ना करे क्या मेरे चितवे होए, अपना चितवया हर करे जो मेरे चित ना होए। एक ते मेरी चाहत है, एक प्रभु दी चाहत है। प्रभु दी जो चाहत है उस नाल मैं राजी नहीं, मेरी जो चाहत है वो पूरी नहीं हो रही तो सोग। ये 20वीं सदी रोगां नाल ते भरी है पर मानसिक सोग नाल भी भर गई।

अपने सोग दे च ही जीना चाहता है और ये सोग पता नहीं कितने तरह के रोगों नू जन्म देता है, कितने तरह की मानसिक बीमारियों नू जन्म देता है। इत्थे तक कौन पहुंचाता है? इच्छावां पहुंचादियां ने, ख्वाहिशां पहुंचादियां ने। क्यों पहुंचादियां ने? पूरियां नहीं आउंदियां। इस नू इंज एक सरिता एक नदी दा रूपक अलंकार बना के राजयोग भर्त्री इस सोग दी रूपरेखा पेश कर देने। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी तृष्णा त्रंग खरी व्याकुली गंभीर है। ये जो व्याकुलता है, ये जो बेचैनी है, व्याकुल बेचैन, चैन नहीं है, सुकून नहीं है, मन दे तलते। क्यों? ख्वाहिश है, आसावां इस दे अंदर चल रही ने, किसे किसे इच्छा नाल संकल्प चल पेंदे ने, नहीं ते इच्छावां चलदियां रहिंदियां ने, उन्हां नाल संकल्प नहीं चलते। इच्छा ओही पूरी करन लई मनुख दृढ़ हो जांदा है जिस दे नाल इसकी संकल्प शक्ति चल पवे, हां ये इच्छा मैं पूरी करनी है, बाकी इच्छा बह जांदियां ने। ये इस तरह है, दरिया ते बह रहा है, बस ओही पानी साडे शरीर का हिस्सा बनिया जो पी लिया सी उस वक्त दे दरिया चो, ओही पानी साडा हिस्सा बनिया जो असी अपने खेत नूं सिंच दिता, बाकी तो वग रहा है। इच्छा पूरी करन विच जद मनुख दृढ़ संकल्पित हो जाता है तो वह इच्छा तो कई दफा पूरी हो जाती है, तो जे ना पूरी होवे तां वी एक रेखा छोड़ जाती है, बाकी इच्छावां इन चलदियां रहिंदियां ने जिवें नदी बह रही है। भावें नदी दे कोल घर है, बह रही है, पर नदी नाल उतना ही मतलब है, जो पी लिया पानी वही हिस्सा बने है, बाकी वग रहा है। दिन रात ख्वाहिशां दी सरता अंदर वग रही है, इच्छावां दी नदी अंदर चल रही है। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी, इस आसा रूपी नदी दे च पानी केड़ा है? संकल्प। जिस जिस इच्छा नूं पूरी करन वास्ते दृढ़ संकल्पित असी हो जांदे हां, ओ उस नदी दा जल बन जांदा है, उस नदी दी धारा बन जांदी है। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी तृष्णा त्रंग खरी। इस आसा रूपी नदी दे च अगर संकल्प पानी है तो त्रंग की ने तृष्णा, क्योंकि जिथे इच्छा है उथे संकल्प ते पैदा होणगे, ते जिथे दृढ़ संकल्प हो गया इच्छा दी पूर्ति लई उथे तृष्णा ते प्रबल होवेगी, लाजमी होवेगी। व्याकुली गंभीर है, ए नदी गहरी कितनी है, इहदा पाठ कितना गहरा है, ए चौड़ी कितनी है, ए गहरी कितनी है। तो ए राजयोगी, ए महान संत, मन दियां गहराइयां नूं समझण वाला ए महायोगी इंज कह रहे है, व्याकुलता ही इसकी गहराई है, बेचैनी ही इसकी गहराई है। और एक हकीकत है, बेचैनी अजे भी नापतोल दे च नहीं आई, कोई ऐसा पैमाना नहीं कि नाप लईए व्याकुलता कितनी गहरी है। बहुत गहरी है, बहुत गहरी है, इदियां जड़ां नहीं लभदियां, इदी तय नहीं लभदी, व्याकुलता ही इसकी गहराई है। जिथे इच्छावां ने उथे संकल्प ने, जिथे संकल्प है उथे तृष्णा है, और जिथे प्रबल तृष्णा दे तरंग ने व्याकुलता ते उथे है ही। ये इसनू उल्टा के कह दो, ये बेचैन क्यों है? तृष्णालु है। ये तृष्णालु क्यों है? इहदे अंदर संकल्प ने। संकल्प क्यों ने? इहदे अंदर इच्छावां ने, इच्छा दी पूर्ति करना चाहुंदा है। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी
तृष्णा तरंग खरी व्याकुली गंभीर है। आलम ते इस तरह कहंदे ने जिंदगी नापी जा सकती है, चलो वध तो वध कह लिए 100 साल, तृष्णा नहीं नापी जा सकती, व्याकुलता नहीं नापी जा सकती। और ये जिहड़ी आसा नदी है कितनी लंबी है, जमीन देते वगदियां या नदियां दे ए बकायदा धारावां नापियां जा चुकियां ने, ये किन्नी मील लंबी है, इदा पाट किन्ना चौड़ा है, ये गहरी कितनी है। इक्को ही नदी है जो मन विच वग रही है, ना लंबाई नाप दे चाहुंदी है, ना चौड़ाई नाप दे चाहुंदी है, ना गहराई नाप दे चाहुंदी है, वो है आसा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने आसा विच अत दुख घना, मन मुख चित लाया, बकायदा फैसला भी कर देता है। बहुतियां व्यर्थ दियां इच्छावां किस दे अंदर आउंदियां ने जिसने अपने मन नूं ही सामने रखे है। और सोग किथे ज्यादा आउंदा है जिथे इच्छावां ज्यादा ने, और सारियां इच्छा किस दियां पूरियां हुईयां ने, रूहे जमीन ते एक दियां भी नहीं हुईयां। कोई एक मनुख भी इतिहास दे च असी बयान नहीं कर सकते या दावे नाल नहीं कह सकते कि इस बंदे दियां सारियां इच्छावां पूरियां हो गईं, एक भी नहीं होया। गजब दी गल, इतना लंबा चौड़ा पृथ्वी दा इतिहास और इतनी मनुखता, और एक दियां भी सारियां इच्छावां ना पूरियां हुईयां होन ते फिर भी हर बंदा दृढ़ संकल्प होवे मैं अपनियां सारियां ख्वाहिशां पूरियां करनियां ने, ते इस तो वड्डी होर मूर्ता केड़ी होवेगी, इस तो वड्डी होर नादानी केड़ी होवेगी। पहले तू ओ उदाहरण ते कोई लभ ले किस दियां सारियां ख्वाहिशां पूरियां हुईयां ने, किस दियां सारियां इच्छावां पूरियां हुईयां ने। कह दिता सी किसे वक्त बहादुर शाह जफर ने, इस कच्ची जमीन दे च पक्के महल किस दे बने ने, इस कच्ची धरती दे च पक्की जिंदगी किसनों मिली है। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पाए दार में, लेकिन फिर भी